0: को दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ क्रमैले संस्कृत अनि हिन्दी समाचार। 7:05 लिएर आउनेछौ कार्यक्रम गोल्डन मेलोडी अन्तर्गत पुराना सदाबहार हिन्दी चलचित्रका गीतहरू भने 7:25 आकाशवाणीको खरसाङ केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछ नेपाली समाचार। 7:35 लिएर आउनेछौ सूचना अनि विविध कार्यक्रम प्रणाम सिक्किम। बिहान 8 बजे अनि 8:15 यहाँलाई आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजी समाचार। उसरी नै 8:30 आकाशवाणी को उत्तर पूर्वी सेवा शिलङ केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछ अंग्रेजी समाचार। 8:40 लिएर आउनेछौ कार्यक्रम गीतिमाला अन्तर्गत आधुनिक नेपाली गीतहरू भने 9 बजे सुनाउनेछौ मुख्य समाचार। 9:02 श्रोताहरूलाई मनोरञ्जन गराउन हामी लिएर आउनेछौ कार्यक्रम चित्रांजलि अन्तर्गत पुराना हिन्दी चलचित्रका गीतहरू। यसरी बिहान 10 बजे श्रोताहरूलाई सुनाउनेछौ मुख्य समाचार भने 10:02 कार्यक्रम ताजेतराने अन्तर्गत श्रोताहरूलाई सुनाउनेछौ विभिन्न नयाँ हिन्दी चलचित्रका गीतहरू। श्रोता इत थिए अब उसो आजको हाम्रो बिहान 10:30 प्रसारण गरिने कार्यक्रम सम्बन्धी जानकारी। हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौ। श्रोता समय बिहानको 6:55 हुने लागेको छ। अबको केही क्षणमा हामी यहाँलाई आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौ क्रमले 6:55 संस्कृत अनि त्यसपछि 7 बजे हिन्दी समाचार। कृपया केही क्षण प्रतीक्षा गर्नुहोला।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विमानन परिवहन मार्ग आधारभूत संरचना क्षेत्रेषु महत्वपूर्णाः योजनाः अनुमोदिताः। पश्चिम एशिया संकट कारणेन वर्धितेषु इंधन मूल्येषु भारतीय विमान सेवानां कृते विमान इंधनस्य अर्थात एटीएफ मूल्यस्य स्थिरीकरणार्थं तैल विपणन समवायेभ्यः सहस्रकोटि रूप्यकाणां आय व्यय सहायतां प्रदातुं प्रशासनं निर्णयं कृतवत्। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवोचत् यत् एतेन विमानन क्षेत्र संबद्धाः प्रायः 77 लक्ष आजीविकाः सुरक्षिताः भविष्यन्ति। सहायता योजनेयं 36 मास पर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। मन्त्रिमण्डलेन दिल्ली निकटवर्ति क्षेत्रे वायु प्रदूषण नियन्त्रणार्थमपि एकस्याः योजनायाः अनुमोदनं कृतम्। द्विवर्षीय योजनायां प्रायः 2 लक्षं ट्रक यानानि 16,000 बस यानानि च प्रतिष्ठापयितुं लक्ष्यं निर्धारितम्। मन्त्रिमण्डलीय समित्या ओडिशा राज्ये रामेश्वरात् पारादी पर्यन्तं 63,100 किलोमीटर परिमितस्य नूतन तटीय राजमार्ग निर्माणाय अनुमतिः प्रदत्ता। एतदतिरिच्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः 31 तथा 31,200 च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजनापि अनुमोदिता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला सम्बद्धानां अशेषेषु पक्षेषु मन्थनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा व्यापार निवेश स्वास्थ्य सेवा परिवहनं नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणाम् अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज वर्यः भारतदेशस्य 5-दिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्ने हि विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य 2-दिवसीय यात्रायाम् अगरतला नगरं प्रति एष्यति। यात्रावधौ श्रीशाहः पुष्पवन्त पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च

0: करिष्यति सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीय प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रान्ति निलये भीषणाग्निकाण्डे एकविंशतिः जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिण दिल्ल्यारक्षि विभागस्य उपायुक्तः अनन्त मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमन विभागस्य अष्टभिः वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिक सेवानां संयुक्त प्रयत्नैः चत्वारिंशदधिकाः जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्त परिवारान् प्रति गहन संवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। यह यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव को 213.7 मीटर तदनुसार 1404 किलो हर्ज में हामी आकाशवाणी को गान्तोक केन्द्र बोलिरहेका छौं। यसका साथै श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई एफएम कञ्चनजंगा को 103 मेगाहर्ज अनि मोबाइल एप न्यूज अन एआईआर मा पनि सुनिरहनु भएको छ।
2: जल्दी टिफिन प्याक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
3: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
2: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
3: तो फिर सही नंबर,
2: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
2: काम से नहीं।
4: आरबीआई कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
6: निर्वाचन आयोग भारत सरकार को निर्देश अनुसार सिक्किम में एसआईआर अर्थात मतदाता सूची में विशेष सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ।
7: गत 30 मई देखि 28 जून 2026 सम्म बीएलओहरूले घर घरमा गएर इन्युमेरेशन फर्म वितरण अनि संकलन गर्नेछन्।
6: सबै मतदातालाई आफ्नो फोटो सहित फारम राम्ररी भरेर समयमा नै बुझाउने अनुरोध छ।
7: 1 जुलाई 2026 सम्म 18 वर्ष पुग्ने योग्य मतदाताहरूले पनि फर्म 6 बुझाउन सक्नेछन्।
6: फारम ईसीआईएनईटी एप अथवा भोटर पोर्टल मार्फत अनलाइन पनि बुझाउन सकिन्छ।
7: राज्य चुनाव आयोग सिक्किम सरकारद्वारा जनहितमा जारी।
1: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, समय बिहानको 7:06 भइसकेको छ। कार्यक्रम गोल्डन मेलोडिसको प्रतीक्षामा रहनुहुने सम्पूर्ण श्रोतागणमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। श्रोता, सधैँको कार्यक्रममा झैं आज पनि हामी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं केही पुराना सदाबहार हिन्दी चलचित्रका गीतहरू। आजको पहिलो चलचित्रको कुरा गरौं। सन 1953 सालमा फली मिश्रीको निर्देशनमा आएको चलचित्र अरमानको। यस चलचित्रमा देवानन्द, मधुबाला, शशिकला, केएन सिंह, जागीरदार लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। यो एक रोमान्टिक नाट्य चलचित्र हो जसलाई बक्स अफिसमा उक्त सालको एक सफल चलचित्र मानिन्छ। यस चलचित्रका गीतहरूलाई एसडी बर्मनले संगीतबद्ध गरेका हुन् भने गायक कलाकारहरू मन्ना डे, गीता दत्त, तलत महमूद अनि आशा भोसले स्वर भरेका छन्। त श्रोता, अब भने सुनौ यसै चलचित्रबाट साहिर लुधियानवीको शब्दमा रहेको यो गीत कलाकार गीता दत्तको स्वरमा।

0: हामी आकाशवाणीको गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता, समय बिहानको 8 बज्ने लागेको छ। अबको केही क्षणमा हामी यहाँलाई आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौं। क्रमले प्रथम हिन्दी अनि त्यसपछि अंग्रेजी समाचार, त्यसपछि आकाशवाणीको उत्तर पूर्वी सेवा सिलङ केन्द्रबाट सम्प्रसार गरी सुनाउनेछौं समाचार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
4: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
6: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य

0: ये जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिससे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
3: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
2: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
4: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
2: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
5: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय

0: और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋतव्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमरीका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमरीका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में 7 सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में

श्रोतालाई अघिल्लो गीत सुनाउन लागिरहेका छौं। चलचित्र हम दिल दे चुके सनमबाट कलाकार कविता कृष्णमूर्ति अनि एमएस सलामतको स्वरमा।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: हामी आकाशवाणी को गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोता समय बिहानको 10:03 भइसकेको छ। हामी यहाँहरूमाज लिएर उपस्थित भइसकेका छौं कार्यक्रम ताजे तारानी अन्तर्गत विभिन्न नयाँ हिन्दी चलचित्रका गीतहरू लिएर। ताउनो श्रोता कार्यक्रमको यो पहिलो गीत सुनौ। चलचित्र 1920 हरर्स अफ द हार्टबाट कलाकार प्रणव सिंघलको स्वरमा।

हूँ कि दिल का मेल बॉक्स वो प्रोग्राम है जिसमें आपकी पसंद के गीतों की रिक्वेस्ट ली जाती है और उन्हें पूरी करने की कोशिश की जाती है। अपनी रिक्वेस्ट जो आप भेजते हैं तो उसके लिए मेल आईडी नोट कर लीजिए, fmgoldairdelhi@gmail.com। fmgoldairdelhi@gmail.com पर आप अपनी पसंद के गीतों की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। समय हुआ हमारे पास वो गीत भी मिल जाएगा तो आपकी पसंद पूरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिलहाल जिनकी पसंद पूरी हो रही है वो हैं महेश अग्रवाल और मीना अग्रवाल, जिन्होंने रजनीगंधा फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना सुनना चाहा है।

0: मन गा।
1: बिल्कुल मन ऐसा ही है, कभी भी कुछ भी चाह सकता है, कुछ भी पाने की इच्छा कर सकता है, लेकिन इच्छाओं का क्या है, वो तो ढेरों हैं, अनगिनत हैं, और उनका पूरा होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है। बस हम कुछ जो उनकी तरफ बढ़ने वाले कदम है वो कदम बढ़ा सकते हैं, अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हैं, यही हमारे हाथ में है। जैसे आपके हाथ में है मोबाइल फोन और आपको लिखना है मैसेज और अपनी पसंद का गीत और हमें भेज देना है fmgoldairdelhi@gmail.com पर। अभी मैं आपको एक और गीत सुनवा रही हूं, जो कि एक ब्रेक ले रही हूं मैं, हमारी आकाशवाणी का गीत है। ये गाना सुनिए और फिर लौट कर आते हैं।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और ये है दिल का मेल बॉक्स, जिसमें ये गाना आप सुन रहे हैं गुमराह फिल्म से और इसकी फरमाइश की है शम्सुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, अनु खान ने।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
4: स्टेज आ गया है। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
3: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
4: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
3: और बिना शो क्या मिलेगा?
4: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
3: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www

वन ऑफ द बेस्ट लोरी इन हिंदी फिल्म म्यूजिक. अगर आपने फिल्म म्यूजिक में लोरी ढूंढने जाएंगे तो है ही बहुत गिनी चुनी, और उनमें से एक ये जो है ना, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है. और ये जो लोरी आजकल तो बनती नहीं है फिल्मों में, अगर आप देखें तो लोरी मैंने तो बहुत जमानों से नहीं सुनी. कौन सी फिल्म में आई है अगर आपको पता हो तो बताइए, मैं भी सुन लूंगी. लेकिन पुरानी फिल्मों में हाँ लोरियां होती थी, कुछ ना कुछ एक ऐसा होता था जो बच्चों के नाम होता था, पर अब ऐसा जरा कम होने लगा है. खैर, ये जो गाना यानी ये जो लोरी आपने सुनी गीता दत्त की आवाज में, सुजाता फिल्म से थी, और जिन पर ये पिक्चराइज है यानी सुलोचना लाटकर, आज उनकी पुण्यतिथि है, और इसीलिए इसको सुनना चाहा था मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान ने. और अब पढ़ते हैं अगले गाने की तरफ.

ये ना रस्में हुआ करती थी एक जमाने में जो कि धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं, लेकिन इस तरह के गानों में हम उन रस्मों को याद कर सकते हैं। शैलेंद्र साहब ने लिखा था ये गीत, और इस तरह की रस्में जब हैं हम गीतों में सुनते हैं तो एटलीस्ट याद तो रहता है कि सावन में कभी ऐसा होता था कि भाई जाता था बहन को लेने के लिए उसकी ससुराल से, और फिर तीज मनाई जाती थी घर में आकर। खैर अभी उसमें वक्त है, फिलहाल अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि इन सब चीजों पे बोलना शुरू होंगे तो फिर वो बातें खत्म ही नहीं होंगी। अगला गाना जो सुनना चाहा है मनोहर लाल गांधी ने सुनना चाहा है, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म से।

वक्त हो गया है इस प्रोग्राम के आखिरी गीत का, जिसे सुनना चाहा है भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण संस्कृति और पौरुष ने। फिल्म है फिर कब मिलोगी। आप इस गाने को एंजॉय कीजिए और नीतू को इजाजत दीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ तस्वीर में 11:10 पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज कल भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वे इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका

0: उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं को तलाशना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमरीका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्रवाई कर सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज मिजोरम म्यांमा सीमा पर स्थित चम्फाई कस्बे के 9 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। ईडी ने बताया कि ये छापेमारी देश में बड़े पैमाने पर अवैध बर्मी सुपारी की तस्करी करने वाले एक संगठित सीमा पार नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए की जा रही है। निदेशालय ने बताया कि इस अवैध नेटवर्क के जरिए करोड़ों रूपये की हेराफेरी की गई है। इसराइल और लेबनान ने संघर्ष विराम को फिर से लागू करने तथा लेबनान के भीतर कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाने पर सहमति व्यक्त की है जहां हिजबुल्ला लड़ाकों की मौजूदगी नहीं होगी। अमरीका की मध्यस्थता में हुई चौथे दौर की वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया है कि संघर्ष विराम तभी प्रभावी रहेगा जब हिजबुल्ला पूरी तरह से गोलीबारी बंद करे और लितानी नदी के दक्षिण के क्षेत्रों से अपने सभी लड़ाकों को हटाए। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मड़गांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Acting President of Venezuela Delcy Rodriguez in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived in New Delhi yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the Ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology, Communication and Information and Transportation. According to the Ministry of External Affairs, India and Venezuela enjoy warm and friendly relations underpinned by cooperation in the energy sector, trade and shared commitment to the Global South. It said the visit is expected to further strengthen bilateral ties and deepen engagement between the two countries across diverse sectors. Union Home Minister Amit Shah will chair the

कुदरत का हरियाली का साथ चाहिए हो तो केरल से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। और आज की हमारी डेस्टिनेशन भी केरल में ही है, जिसे आपने चेन्नई एक्सप्रेस और निशब्द जैसी फिल्मों में देखा होगा। ये है केरल के इडुक्की जिले की पहाड़ियों में बसा हुआ हिल स्टेशन मुन्नार। तो आज तस्वीर में मुन्नार की बातें नीतू के साथ, और साथ में होगा सुमधुर संगीत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz।

मुसाफिर का तो काम यही है कि एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहे। और आज मुन्नार की बातें हो रही हैं तो मुन्नार के बारे में ही बात करेंगे। मुन्नार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, मुनु और अरु। मुनु का अर्थ है तीन और अरु का मतलब है नदियां। यहां आपको तीन नदियों का संगम मिलता है, मुथिरा, पुझा, नलथन्नी और कुंडला। ये वो जगह है जो ब्रिटिश काल में दक्षिण भारत में अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। बाद में मुन्नार चाय की खेती के लिए विकसित किया गया, तो यहां आपको दूर दूर तक फैले हुए चाय बागान भी देखने को मिलेंगे। चाय के इतिहास, उत्पत्ति और विकास की जानकारी आपको चाहिए हो तो यहां एक चाय संग्रहालय भी है, उसे देखिए और जानिए उस चाय के बारे में जिसे आप पीते तो हैं मगर जानते शायद बहुत कम हैं।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: एक आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ तस्वीर सुन रहे हैं आप, और बात हो रही है मुन्नार की। बेहद खूबसूरत जगह है मुन्नार। 1857 में जॉन डेनियल मुन्रो नाम का एक ब्रिटिश ट्रावणकोर और मुन्नार के आसपास के राज्यों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने मुन्नार आया था, लेकिन यहां की सुंदरता को देखकर वो इतने आकर्षित हो गए कि उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने सबसे पहले कॉफी, इलायची जैसी चीजों की खेती की और फिर यहां चाय उगानी शुरू की। बाद में एडब्ल्यू टर्नर ने मुन्नार में बागान लगाना शुरू किया, लेकिन 1880 में एक यूरोपीय बागान मालिक एएच शार्प ने बाकायदा यहां पर चाय की खेती शुरू कर दी, करीब 50 एकड़ जमीन पर। चाय बागानों का शानदार नजारा आपको देखना हो तो अनरियंगल सबसे बेहतर जगह है। ये बांध चाय के बागानों और सदाबहार जंगलों से घिरा हुआ है, और अगर आप देखना चाहते हैं यहां का सबसे ऊंचा स्थान तो वो है मुन्नार कोडाईकनाल रोड पर टॉप स्टेशन नाम का एक विशाल क्षेत्र। तो जब भी आप जाएं तो हर जगह देख कर आइएगा।

कहता है कि आप कहीं भी चले जाएं आप उसे भूलेंगे नहीं। और मुन्नार के पास है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, जो अपने लुप्तप्राय निवासी नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है। 97 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला ये उद्यान जो है वो दुर्लभ तितलियों, जानवरों और पक्षियों की कई प्रजातियों का भी घर है। हर 12 साल में यहां की पहाड़ियां जो हैं वो नीले रंग के कालीन से ढक जाती हैं, क्योंकि तब यहां खिलते हैं नील कुरुंजी के फूल। नील कुरुंजी पश्चिमी घाट के इस हिस्से का एक स्थानीय पौधा है जो 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। एराविकुलम पार्क में आप शाम के वक्त धुंध की चादर से घिरे हरे भरे पहाड़ी ढलानों का शानदार नजारा भी देख सकते हैं।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
1: कभी सुनहरी यादें, कभी रेडियो के वो अनमोल किस्से
0: और कभी आवाजों के पीछे छुपे संघर्ष की कहानी। सुनिए आकाशवाणी के वरिष्ठ प्रसारण कर्मियों से खास बातचीत,
1: जहां वे साझा करेंगे अपने अनुभव, यादगार पल और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के अनसुने किस्से।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग हर दिन दोपहर 3:30 से 4 बजे तक सिर्फ FM गोल्ड पर।
2: नमस्कार, मैं प्राची सिंह, बटरफ्लाई गर्ल ऑफ इंडिया, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बधाई देती हूँ। मेरी एक बहुत ही खास मेमोरी है आकाशवाणी के साथ। जब मैं कॉलेज जाती थी पापा के साथ गाड़ी में, हमेशा आकाशवाणी पे न्यूज बुलेटिन सुनते हुए जाती थी और मैं बहुत ही ध्यान से सुनती थी, क्योंकि मुझे मालूम था न्यूज बुलेटिन खत्म होते ही पापा मुस्कुराते हुए बोलेंगे, अच्छा समराइज करके बताओ। ये जो वहीं से आदत मेरी शुरू हुई थी न्यूज को पढ़ के हर दिन अपडेटेड रहने की, और ये जर्नी मेरी अभी तक चली आ रही है। मैं एक बार फिर से आकाशवाणी को 90 इयर्स कंप्लीट होने पे बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। आप एक आवाज ही नहीं, एक पहचान है।

तस्वीर सुन रहे हैं आप नीतू के साथ आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर, और हम मुन्नार की बातें कर रहे हैं जहां के वाटरफॉल्स अपनी सुंदरता में अद्वितीय हैं। और एक दो नहीं, कई वाटरफॉल्स हैं यहां पर। लक्कम वाटरफॉल्स, अट्टुकल, न्यायमाक्कड़, कुथुमकल, चियापारा, वलारा और थुवमन, ये सारे वाटरफॉल्स आप यहां देख सकते हैं। चिन्ना कनाल और इसके वाटरफॉल्स बहुत खूबसूरत लगते हैं जब करीब 2000 मीटर की ऊंचाई से एक खड़ी चट्टान से जलधाराएं नीचे गिरती हैं। और उस वक्त ना, बस अगर आप वहां देख रहे हैं ना, तो आपको लगेगा ये कैसा चमत्कार है प्रकृति का कि बस देखते ही रह जाएंगे। सभी वाटरफॉल्स तक पहुंचना आसान भी नहीं है, तो आप पहुंचेंगे ट्रैक करके, यानी प्रकृति प्रेमियों के अलावा ट्रैकिंग के दीवानों के लिए भी मुन्नार जो है वो एक अच्छी जगह है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है अनामुड़ी पीक, यहां भी ट्रैकिंग रूट है, पर ये काफी ऊंचा है, करीब 2700 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा। लेकिन जिनको जाना होता है ना, वो ऊंचाई की परवाह नहीं करते, मुश्किलों की परवाह नहीं करते, बस अंदर से आवाज आती है और आप पहुंच जाते हैं।

0: मुन्नार ऐसी ही जगह है कि बस आप दिल हथेली पर लेकर वहां घूमते रहे, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह है कि आपका दिल वापस आने के लिए करेगा ही नहीं। और शॉपिंग का अगर आपको शौक है ना, तो फिर तो आपके लिए स्वर्ग है। चाहे चाय हो या मसाले, आप यहां से अदरक, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी, कॉफी, लौंग, जायफल, बहुत सारे मसाले खरीद सकते हैं। और घर पर बनी चॉकलेट्स यहां मिलती हैं, तो आप उन्हें भी ले सकते हैं। सफेद, डार्क, लिकर से भरी हुई और नट्स वाली चॉकलेट्स सब हैं यहां पर। मुन्नार में बहुत सारे रिजॉर्ट्स और होटल्स हैं जो सभी जरूरतों को पूरा करते हैं, और इनमें आपको अपने बजट के हिसाब से किफायती, सस्ते, महंगे, हर तरह के रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। जो आपको सूट करे वो आप ले सकते हैं, यानी कि आपको रहने की प्रॉब्लम नहीं है।
1: आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोतागण, समय यस बेला हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार दिउँसोको 11:40 भइसकेको छ। अब प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौं कार्यक्रम नारी संसार।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: RBI कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: निर्वाचन आयोग भारत सरकारको निर्देश अनुसार सिक्किममा SIR अर्थात मतदाता सूचीमा विशेष सघन पुनरावलोकन कार्य जारी रहेको छ।
5: गत 30 मईदेखि 28 जून 2026सम्म BLO-हरूले घर घरमा गएर इन्युमेरेशन फर्म वितरण अनि संकलन गर्नेछन्।
4: सबै मतदातालाई आफ्नो फोटो सहित फारम राम्ररी भरेर समयमा नै बुझाउने अनुरोध छ।
5: 1 जुलाई 2026सम्म 18 वर्ष पुग्ने योग्य मतदाताहरूले पनि फर्म 6 बुझाउन सक्नेछन्।
4: फारम ECINET एप अथवा भोटर पोर्टल मार्फत अनलाइन पनि बुझाउन सकिन्छ।
5: राज्य चुनाव आयोग सिक्किम सरकारद्वारा जनहितमा जारी।
6: श्रोतागण यहाँहरूलाई यो अघिल्लो गीत सुनाइरहेका छौ कलाकार डेजी बरेलीको आवाजमा।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिन बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
0: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे एनसीईआरटी का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
0: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं, संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
0: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है एनसीईआरटी की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
0: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
2: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की।

0: इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहां वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
0: अजी जी, इसका कारण यह है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
0: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
1: जी,
0: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
1: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
0: जी,
1: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
0: जी,
1: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
0: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन है स्कू और थुकपा।
0: जी,
1: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
0: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
1: हाँ जरूर कीजिए।
0: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
1: जी,
0: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
1: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे, मैग्नेटिक हिल?
0: बिल्कुल याद है।
1: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
0: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
1: हाँ?
0: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
0: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
0: जी,
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
0: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
0: जी,
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है

0: भारत अर्थात इंडिया।
1: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
2: Wonderful shot. The scoop shot. It gets through. It's a big one. It's a huge boundary. Goes wide through the offside. He's got him. That's it. India win.
1: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
3: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
1: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
4: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
5: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा, तुम दोनों आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, आ जाओ शाबाश।
4: क्या अभी आपके पास समय होगा?
5: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
4: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
5: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का।
4: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
5: अच्छा।
4: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
5: और
4: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
5: हाँ, बोलो।
4: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
5: बिल्कुल।
4: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही हैं। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
5: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
4: 5000 वर्ष पहले?
5: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
4: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
5: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
4: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
5: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
4: अच्छा।
5: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
4: जैसे
5: इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
4: वैदिक समूह?
5: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
4: भरत? भरत नाम तो हमने सुना है।
5: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
4: ओ, भरत। अच्छा, तो ये बात है।
5: हाँ।
4: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
5: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।

0: अच्छा
1: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
2: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
1: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
2: वो क्या सर?
1: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदू या हिंदू कहा है।
2: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदू या हिंदू कहा है, भला ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
2: है ही नहीं?
1: हाँ।
2: ऐसा कैसे?
1: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
2: ओ।
1: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
0: हिंदू।
1: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
2: तो फिर?
1: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
1: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
2: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
1: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
2: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
1: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ।
2: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
1: बिल्कुल।
2: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
1: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
2: अच्छा।
1: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
2: वो क्या?
1: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
2: जम्बूद्वीप?
1: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
2: जम्बूद्वीप?
1: हाँ।
2: ये नाम भला क्यों?
1: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
2: अच्छा।
1: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
2: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
1: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है, उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
2: इतने सारे देश?
1: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
2: अच्छा। सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
2: ये नाम कैसे आए?
1: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
2: जी सर।
1: हाँ, तो अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
2: अच्छा।
1: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
2: ओ।
1: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
2: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
1: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
2: ओ।
1: हाँ।
2: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
1: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं। और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को

0: इंडोई कहते थे।
1: अच्छा, इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ?
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
2: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी।
1: हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
2: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
3: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
5: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
6: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
7: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
8: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
9: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
8: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
9: हाँ पूछो बेटा।
8: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
9: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
8: लेकिन माँ।
9: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा। जोसेफ
8: जी,
9: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
8: अच्छा माँ, ये लो माँ।
9: ला।
7: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
8: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे, मिल गया मुझे।
9: क्या मिल गया
8: मुझे?
9: क्या मिल गया? क्या मिल गया?
8: मुझे मिल गया।
7: क्या मिल गया भाई? क्या मिल गया?
9: सब क्या हो गया तुम्हें बेटा? बताओ तो सही, क्या हो गया है?

0: अब मुझे उड़ने का तरीका मिल गया।
1: हाँ
0: उड़ने का तरीका मिल गया।
1: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
0: स्टीफन स्टीफन माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
2: कुछ भी तो नहीं।
1: कुछ भी तो नहीं है।
0: ओ नहीं स्टीफन नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
1: वो तो है मगर
0: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
0: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें हैं?
1: हाँ
0: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ चलो देखते हैं।
0: ठीक है आओ मेरे साथ।
2: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन जोसेफ सुनो तो।
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
5: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
6: हाँ भाई भीड़ तो है,
4: लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
5: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
6: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
5: हाँ आओ यही ठीक रहेगा। आओ चलो
7: ना जाने क्या करेंगे।
4: रहने दीजिए भला, कोई चीज उड़ नहीं सकती। अच्छा मजा आ गया,
7: लगता है कुछ हो गया है।
6: अरे भाई साहब रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
7: भाई साहब आ जाइए।
5: आ गए आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
6: अरे अरे वो देखो वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
5: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में। हाँ
6: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
5: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
6: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो हाँ, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
5: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
6: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर क्यों जा रहा है? अरे
4: मान गए कमाल कर दिया।
6: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
7: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
6: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया।
7: बहुत अच्छे देखो देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
6: अरे जबर, अरे दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हो।
7: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ।
6: अरे
7: देखो,
6: अरे अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
3: साथियों ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में

0: पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा। शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ओलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान। और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: हामी आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोतागण, समय यस बेला हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार अपराह्नको 1:30 भइरहेको छ। अबको केही समय यहाँहरूले आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समाप्रसार गरी सुनाउन लागिरहेको छौं विविध भारती सेवाका कार्यक्रमहरू।
5: चलिए देखते हैं हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि बंदनी सौदागर, मेरी जंग कर्मा, मैं तुलसी तेरे आंगन की और सुजाता मिलन और बहुत सारी फिल्में हैं जो हमारी पसंद की हैं। आगे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की बंदनी, अनाड़ी और सौदागर तीनों फिल्मों में उनका काम बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन काम लाजवाब है। उनकी मुस्कुराहट दिल को मोह लेती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं फिल्म सीमा, बंदनी, सुजाता, सौदागर, मैं तुलसी तेरे आंगन की यादगार फिल्म है। वैसे बचपन में दिल्ली का ठग देखने में भी बहुत अच्छी लगती थी उसके एक गाने के लिए। वो गाना कौन सा है जरा ये तो बता दीजिएगा। और दूसरे साथी लिखते हैं कि मैं नूतन जी के सब फिल्में तो मैंने देखी नहीं है, मुझे नूतन जी अभिनीत बंदिनी और सौदागर फिल्म में उनका अभिनय बहुत अच्छा लगा। तो वहीं वैसे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की 1973 की सौदागर फिल्म बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, जो नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी रस पर आधारित है। ये फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई। रविंद्र जैन का जादुई संगीत बेहद शानदार, गीत है तेरा मेरा साथ रहे में भी शामिल हो। इंतजार कीजिए ना। एक कमेंट में लिखते हैं कि नूतन जी उन दुर्लभ अभिनेत्रियों में से थीं जिन्होंने ये साबित किया कि एक महान कलाकार को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चिल्लाने या तेज संवादों की आवश्यकता नहीं होती। सीमा, सुजाता और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में उन्होंने जो रेंज दिखाई वो आश्चर्यजनक थी। बिल्कुल करेक्ट आपने लिखा है ये बात। और दूसरे साथी लिखते हैं कि नूतन जी बहुत सुंदर अभिनय करती थी। उनकी कुछ फिल्में जो हमें पसंद हैं, सरस्वती चंद्र, बंदिनी, सुजाता, सीमा वगैरह वगैरह। एक कमेंट में सुजाता फिल्म के लिए लिखा है कि ये फिल्म समाज में फैली छुआछूत और जातिवाद जैसी गंभीर रूढ़ियों पर चोट करती है। नूतन ने इसमें एक अछूत लड़की सुजाता की मुख्य भूमिका निभाई थी। विशेषतः नूतन के अभिनय की सादगी और उनके द्वारा झेले गए सामाजिक दर्द को दर्शकों ने बेहद करीब से महसूस किया। समीक्षकों के अनुसार इस फिल्म ने नूतन को एक गंभीर और संजीदा अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर संजीदा अभिनेत्री नूतन जी के जन्मदिन पर उन्हीं को समर्पित है। ये जानकर अच्छा लगा, शोभना समर्थ की बेटी ने अपने अभिनय से मां का नाम ही नहीं ऊंचा किया। उन्होंने जिन भी फिल्मों में अभिनय किया, एक आदर्श पत्नी, बहन, प्रेमिका, मां के रूप में जो स्थान पाया वो किसी अभिनेत्री को आज तक नहीं मिला। बंदनी फिल्म के लिए लिखा है कि 1963 की बंदनी बिमल रॉय के निर्देशन में बनी इस फिल्म को भारतीय सिनेमा के मील का पत्थर माना जाता है। इसमें उनके सशक्त अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था।

एक साथी ने अंग्रेजी में कमेंट हमें लिख भेजा है, नमस्कार करते हुए, गुड आफ्टरनून करते हुए कि सुरीला सफर के लिए कि टुडेज द टेक्स्ट इज नाइस एंड इंडिकेट्स मेनी इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स दैट विल बी द कंपेनियन ऑफ लिसनर्स इन सुरीला सफर फ्रॉम बंदिनी छलिया सुजाता सौदागर अनाड़ी सरस्वती चंद्र खानदान पेइंग गेस्ट टू तेरे घर के सामने ओनली नूतन जी एंड नूतन जी एक्सीलेंट स्पॉन्टेनियस ब्यूटिफुल एक्ट्रेस ऑल द बेस्ट।

एक कमेंट में लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर की हम सफर बन रही हैं अपने जमाने के दिग्गज अभिनेत्री और गायिका नूतन, जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के सारे गीत उन्हीं की फिल्मों से होंगे और उनके नाम की इबारत में बड़ी खूबसूरती के साथ शामिल किए गए। नूतन हिन्दी सिनेमा की एक दिग्गज और बहुमुखी कलाकार थी, जिन्होंने अपनी सादगी, सशक्त अभिनय और अनूठी शैली से दर्शकों का दिल जीता। और लिखा है आगे दूसरे साथी ने कि आज सुरीले सफर में होंगी वो बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत नूतन जी, जितनी हमारे बीच की सामान्य सी लड़की वहीं बेहद स्मार्ट नायिका छलिया अनाड़ी में एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिलेंगे। बहुत ही खास होगा आप सभी के साथ नूतन जी की बातें और खानदान का वो खूबसूरत गीत तुम्हें मेरी मंजिल फूल तुम्हें भेजा है। ढेर सारे गाने इन्होंने लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब जो बातें चल रही हैं और इसमें जिक्र आ चुका है फिल्म सुजाता का, जो कि सभी साथियों ने लिखा है, तो फिल्म सुजाता का वो गीत जिसका आप सबको है इंतजार और मुझे लगता है कि ये गाना निश्चित रूप से आप सभी की लिस्ट में जरूर होगा। बताइएगा जरा कि इस गाने में इनके साथ कौन है।

सुजाता फिल्म का ये गाना जलते हैं जिसके लिए। इस गाने को जितनी बार चाहो रेडियो पर सुनो या पर्दे पर देखो बहुत कम लगता है। कितना सहज है ये गाना और अभिनेता अभिनेत्री कितनी सहज अभिनय इसमें इन दोनों कर बैठे हैं। जैसा कि हमने पूछा था आपसे कि इस गाने में अभिनेता कौन है, तो हमारे सभी साथियों ने इसका बिल्कुल सटीक आंसर दिया। साथियों ने लिखा है कि सुनील दत्त टेलीफोन पर यह गाना उन पर फिल्माया गया है और इस गाने में नूतन भी टेलीफोन पर ही हैं जो सुनील दत्त के दिल की बातें सुन रही हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म खानदान का तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा ये गाना जो है बहुत से संगीत कार्यक्रमों में गाया है मैंने और एक प्रतियोगिता में इस गाने के लिए पुरस्कार भी जीता है। वाह भाई क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तो आगे एक हमारी सखी लिखती है कि बंदिनी सुजाता और सीमा आगे लिखा है कि नूतन जी की किसी एक फिल्म को चुनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैंने मेरी सबसे ज्यादातर तीन फिल्मों का अलग अलग फिल्मों के बारे में जो इन्होंने लिखा है ये फिल्में इन्हें बहुत पसंद है। एक कमेंट है जिन्होंने लिखा है कि मैंने रेडियो थोड़ा देर से चालू किया और जैसे ही चालू किया मोरा गोरा रंग गाना आया, मन खुशी से झूम उठा। मुझे लगा शायद ये गाना बच चुका है। मैं जब छोटी थी दूरदर्शन पर सुजाता पिक्चर देखी, हर पिक्चर देखकर मन रो देता था। हमेशा अपने ऊपर होने वाले अन्याय के लिए चुपचाप सहती रहती नूतन जी। वैसे तो हमारी मम्मी के जमाने की हीरोइन थी लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो सीधी और शांत सहेलियां रहती थी उनको हम सब कहते थे ये नूतन है और बाकी सब तनुजा। तो बताइएगा जरा कि नूतन जी और तनुजा जी में रिश्ता क्या है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म सुजाता का गाना हमने सुना, सुनील दत्त साहब टेलीफोन पर नूतन जी को अपने दिल की बात कह रहे हैं, आवाज तलत महमूद साहब की है। और एक ने लिखा है कि फिल्म सुजाता में सुनील दत्त जी हैं और बहुत अच्छा फिल्म अंकन है ये। दूसरे साथी लिखते हैं कि श्वेत श्याम फिल्मों का दौर भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम अध्याय था जहां अभिनेत्री नूतन ने अपने स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास स्थान बनाया। इन्हीं स्मृतियों में सुजाता का भोला चेहरा गहरी आंखें और मासूम अदाएं जीवंत उठती हैं। कहीं वो बंदिनी है कहीं अनाड़ी की नायिका तो कहीं प्रेम और विरह के गीतों में डूबी एक संवेदनशील स्त्री। उनकी फिल्मों में के अनेक गीतों को के साथ प्रेम प्रतीक्षा तथा सपनों से भरे इस अमर श्वेत श्याम गीत को आज भी जब रेडियो पर सुनते हैं एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तब श्वेत श्याम दौर की फिल्में और गाने सुनहरी यादें बनकर मन को छू जाते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि आज की भारत में शब्द ढूंढने की जरूरत नहीं है, उस शख्सियत की फिल्मों से गीत ढूंढना है जिनका नाम नूतन है। आज उनका जन्म स्मृति दिन है, उस छबीली अभिनेत्री को विनम्र नमन करते हैं। उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में नूतनता भरी होती थी क्योंकि नूतन एक अभिनेत्री ही नहीं भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति थी। हर कोई एक कार्य की सीमा होती है लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदारों की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वो कन्हैया अनाड़ी या छलिया राज कपूर के साथ हो या सौदागर अमिताभ बच्चन के साथ हो या धर्मेंद्र के साथ अनेक रात की बनकर चुनरिया रंग ली हो या हैंडीकैप सुनील दत्त की पत्नी राधा बनकर उनकी सेवा करते हुए खानदान का नाम रोशन किया हो या पेइंग गेस्ट देवानंद को तेरे घर के सामने घर बनाने और दुनिया बसाने की हामी भरती हो, उस छोटी सी गुड़िया की कहानी का सुनने का इंतजार रहेगा। और इन्होंने अपना उनको विनम्र नमन भेजा है। तो चलिए जब अनाड़ी फिल्म का भी जिक्र आ चुका है राज कपूर जी के साथ, तो अब हम अनाड़ी फिल्म के गाने की ओर बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि ये गाना जैसे ही शुरू होता है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं।

तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, अनाड़ी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज और फिल्माया गया नूतन जी पर। जैसा कि हमने पूछा था कि इस गाने में जैसे ही शुरुआत होती है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं, तो हमारे सभी साथी लिखते हैं कि पियानो बजा रही हैं अभिनेत्री, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। और हमने ये भी पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी में आपस में क्या रिश्ता है, तो उसको लेकर भी बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं। उससे पहले हम नूतन जी की फिल्मों से लेकर एक याद साझा की है हमारे एक साथी ने कि एक घर बनाऊंगा जी, मैं बताना चाहूंगा कि शादी से पहले मैंने होने वाली अपनी धर्मपत्नी के घर के सामने तो घर नहीं बनाया, लेकिन एक बड़ा घर बनाया उनके घर के सामने वाली सड़क पर, और अजमेर की उसी कॉलोनी में फिर ब्याह कर अपनी धर्मपत्नी को उसी घर में स्वागत किया। एक ये प्यारी सी याद इनकी बड़ी ही मीठी सी रही, बहुत अच्छी लगी। और वहीं जहां पर हमने पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी का रिश्ता, तो लिखते हैं साथी कि नूतन और तनुजा आपस में सगी बहनें हैं, लेकिन दोनों का फेस बिल्कुल नहीं मिलता। तो दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन की छोटी बहन है तनुजा, दोनों शोभना समर्थ जी की बेटियां हैं जो स्वयं अपने दौर में नायिका रही हैं। फिल्म सुजाता के लिए लिखते हैं कि ये सदाबहार गीत जलते हैं जिसके लिए तलत महमूद की मखमली आवाज में गाए गए, मजरू सुल्तानपुरी के सबसे खूबसूरत रोमांटिक गीतों में से एक है। एसडी बर्मन के संगीत और सुनील दत्त के फोन पर अभिनय से मधुर बनाया है इसे। और एक साथी ने कुछ अपनी यादें साझा की हैं कि नूतन बुआ जी की तो सभी फिल्में देखी हैं, पर अब आप लोग कहेंगे कि इसकी बुआ कैसी, तो बताती हूं, जब हम ठाणे में थे और बाबा पिताजी के दोस्त पर्सनल सेक्रेटरी थे नूतन बुआ जी के, तब वो मुमरा में रहा करती थी। बाबा को बालू चाचा ने एक बार नूतन बुआ जी के घर में ले गए थे, तो वो बाबा की वो अनमोल याद मिली जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तब नूतन जी ने खाना खुद बनाया और इन दोनों को खिलाया, बहुत सिंपल सा, और नूतन बुआ मराठी में बहुत सुंदर बातचीत करते हुए खुद को परोसा गेट तक छोड़ने आई और मराठी में कहा, ये तरहा भाऊ कधी कधी वेल मिलाला तर बालू दादा सोबत। बाबा नतमस्तक हो गए कि इतनी बड़ी हीरोइन खुद खाना बनाती है, परोसती है, ऊपर से गेट तक आती है, भाव कह के ऐसी हीरोइन कहीं नहीं मिलेगी। बहुत यादगार बात है। नूतन जी के लिए कुछ और हमारे पास कमेंट्स हैं। लिखते हैं कि नूतन हिंदी फिल्म जगत की एक नामचीन अदाकारा रही हैं, उनके अभिनय का लोहा हर किसी ने माना है। गूगल ने हिंदी सिनेमा की इस दिग्गज अभिनेत्री को के 81वें जन्मदिन पर एक विशेष गूगल डूडल के माध्यम से याद किया था। उनकी बेजोड़ अभिनय क्षमता को श्रद्धांजलि देते हुए डूडल में उनके निभाए गए सबसे प्रतिष्ठित किरदारों के भावों को दर्शाया गया। नूतन की बहुमुखी प्रतिभा को केवल एक चित्र में समेटना मुश्किल था, इसलिए डूडल में उनके चेहरे के चार अलग अलग भावों को चित्रित किया गया था। ये भाव बंदिनी की संघर्षरत कल्याणी, सुजाता की व्यथित और सीमा की एक उपद्रवी अनाथ लड़की के रूप में उनके उत्कृष्ट अभिनय को दर्शाते हैं। नूतन की एक विशिष्ट अभिनय शैली थी जिसमें वे चेहरे की न्यूनतम भाव भंगिमाओं और आवाज के मॉड्यूलेशन से गहरा भाव प्रवण अभिनय किया करती थी। बिल्कुल, और इस गाने में भी जो अब आप सुनेंगे उनका जो आंखों का और जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं वो भी कुछ कम तो नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इस गाने में उनके नायक कौन है, और हमारे मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने का भी इंतजार आप सबको है। वैसे आप सब अपनी अपनी लिस्ट के गाने नोट कर रहे हैं ना, हम तक भेजिए जरूर कि आपके अब तक कितने गाने टिक हो चुके हैं।

सौदागर फिल्म का ये गाना था और हमारे सभी साथियों ने लिखा कि इस गाने में नायक थे अमिताभ बच्चन। एक साथी लिखते हैं कि रविंद्र जैन जी का जादुई संगीत, तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा कि वह बेहतरीन मधुर और भावपूर्ण गीत। बेचारी का इस गाने के बाद अमिताभ द्वारा तलाक देना दर्शकों को झकझोर गया था। दूसरे साथी ने लिखा है कि विविध भारती के लिए भी हम यही कह रहे हैं कि तेरा मेरा साथ रहे, दिन हो के रात सदा बना रहे ये साथ। तो दूसरे साथी ने लिखा कि भाई मेरा तो पांचवां गीत हीरो अमिताभ बच्चन रहे एक फिल्म नूतन जी के साथ, इनका पांचवां गीत शामिल हुआ। और दूसरे साथी ने लिखा कि फिल्म अनाड़ी नूतन पियानो बजा रही है, मेरा वाला गाना आ गया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि वो पियानो बजा रही है, वैसे गाने में बांसुरी का भी खूबसूरत प्रयोग किया गया है, अनाड़ी तेरा जाना हाई पिच पर विशेष गायकी। तो दूसरे साथी ने लिखा कि मेरी लिस्ट का तीसरा गीत भी शामिल हो चुका है। और एक साथी लिखते हैं कि गुड आफ्टरनून, आज प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत लेट हो गई, मेरी तबीयत कुछ खराब है और ये अभी हॉस्पिटल से आई हैं, तो जैसे ही आपकी आवाज सुनी प्रोग्राम नूतन जी पर है उनके जन्मदिन पर उन्हें नमन करते हैं और उनके बारे में क्या कहें, उनकी फिल्मों में से कोई एक फिल्म चुननी बहुत मुश्किल है, मुझे तो उनकी सारी फिल्में बहुत पसंद हैं, उनकी बंदनी सीमा ये दोनों फिल्में मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। और अब वक्त हो चला है कि आज के इस कार्यक्रम का आखिरी मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबकी नजर।

0: सुने।
1: एक साथी लिखते हैं कि आज महान अभिनेत्री न्यूटन जी को श्रद्धांजलि स्वरूप सुरीला सफर में सम्मान दिया जा रहा है। बेहद पसंद आया ये आपका जेस्चर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनने।
1: आप सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए हमारे एक साथी लिखते हैं कि अनेक साथियों के कमेंट शामिल हुए, उन सभी को बधाई और इन्हें प्रस्तुति अच्छी लगी। दूसरे साथी ने लिखा, शानदार लाजवाब सफर रहा आपके साथ, गति में और संगीत में कार्यक्रम का धन्यवाद, प्रश्नों ने बांधे रखा। तो अब साथियों वक्त हो चला है कि आपसे ले लें इजाजत। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती के इस कार्यक्रम सुरीला सफर को सुरीला और खूबसूरत बनाने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर बाद, फिलहाल आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रूपये की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधार

0: आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद एनईसी का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलांग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस जीबीआरसी के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित जीबीआरसी का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: आईसीयू 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है, शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जायेगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। यह चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
4: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
5: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौ। सदगण समय यस बेला हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार अपराह्नको 2:30 भइसकेको छ। अब यहाँहरूलाई सुनाइरहेका छौ केही नेपाली देशभक्ति गीत, र यो पहिलो गीत सुनौ कलाकार नारायण राई अनि साथीहरूको आवाजमा।

0: आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट बोलिरहेका छौं। श्रोताहरूसँग यस बेला हाम्रो स्टुडियोको घड़ी अनुसार अपरान्हको 3 बज्ने लागेको छ। अबको केही क्षणमा यहाँहरूलाई आकाशवाणीको दिल्ली केन्द्रबाट समाप्रसार गरी सुनाउन लागिरहेका छौं क्रमैले हिन्दी अनि अंग्रेजीमा राष्ट्रिय समाचार। त्यसपछि सुन्नुहुनेछ एफएम गोल्डका कार्यक्रमहरू।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं के साथ अवसरों की तलाश करना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यविट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2री बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलांग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक के बारे में जानकारी दी है।
2: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
1: वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। जनवरी 2015 में श्री निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगाया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरलम में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela Delcy Rodriguez in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. He said Venezuela considers India as a stable demander for many years to come. Mr. Tandon informed that besides energy partnership, the discussions also went into broadening the economic partnership in other areas.
4: The discussions also went into broadening the economic partnership to other areas, not just in the energy sector, but also in areas like mining, animal husbandry, transportation, agriculture equipment, automotive sector and pharmaceuticals, to try and work out ways in which Indian commercial entities can enter the Venezuelan market successfully.
3: During the conversation, the leaders also exchanged views on global and regional issues of mutual interest. Both sides reaffirmed their commitment to deepening the bilateral partnership and advancing the interests of the Global South. The 73rd plenary session of the Northeastern Council NEC is underway in Shillong, Meghalaya. Union Home Minister Amit Shah is chairing the session. Discussion on progress made by the CM high-level task forces constituted for critical sectors of regional development is high on the agenda. The Ministry of Development of Northeast Region said the deliberations are expected to facilitate coordinated action among states and stakeholders for achieving shared developmental goals. Northeast Vision Plan 2047 to provide a long-term roadmap for transforming the northeastern region into a vibrant hub of economic growth will also be discussed, as also the connectivity, innovation, sustainability and cultural prosperity by 2047. Union Minority Affairs Minister Kiran Rijiju today said that technology has played a crucial role in improving governance and ensuring the effective delivery of welfare schemes. He made the remarks while addressing the reforms Utsav celebrating 12 years of reforms organized by the Ministry of Minority Affairs in New Delhi today. The minister noted that the adoption of technology has enabled ministries to bring tangible changes to the lives of beneficiaries across the country. Mera Yuva Bharat, My Bharat, has been officially recognized by Guinness World Records for achieving the title of most users to take an online quiz in 1 week, with over 390,000 participants who completed the entire length of the quiz. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia received the certificate in a ceremony held in New Delhi today. The record was achieved through the Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026 quiz from the 25th to the 31st of October last year.

जहां कहीं भी हैं जिंदगी चैन सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। इसी दुआ और उम्मीद के साथ करते हैं शो का आगाज 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ है मेरे तमाम सुनने वाले, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं आप ही का शो है जिसमें हम शामिल करते हैं आपकी पसंद के नगमे जो आप हमें भेज सकते हैं मैसेजेस के जरिए। कहां पर? यहां पर नंबर है 9868886853 और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। जब तक आप ये वाला गाना सुनते हैं मैं पढ़ती हूं आपके मैसेजेस।

जी, आपके बेतादाद मैसेजेस इस बात का सबूत हैं कि आप एफएम गोल्ड से कितनी कितनी मोहब्बत करते हैं। तो बढ़ते हैं पहले मैसेज की तरफ, देखें कौन है जिनका मैसेज हमें मिला है। सबसे पहला जो मैसेज हमारे पास आया है वो है हमारे साथ हरजिंदर सिंह भाटिया है, जिनका मैसेज हमको मिला है। इसके अलावा कौन है, अयान वर्मा का मैसेज भी हमको मिला है। इसके अलावा कौन है, मस्कीन दादा का मैसेज हम तक पहुंचा है, और राधेश्याम शर्मा है हमारे साथ शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में, मसरूर हसन हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस प्रोग्राम में। इसके अलावा कौन है, इसके अलावा हमारे साथ बहुत सारे सुनने वाले हैं, मैं कोशिश कर रही हूं जल्दी से आप सबके नाम पढ़ दूं। मेहर अरोड़ा हमारे साथ हैं, कहां से हैं, राजस्थान से इनका मैसेज हमें मिला है। विजय सुल लेकर हमारे साथ हैं, उमेश कुमार हैं, परवीन सोनी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस वक्त, कहां से, राजकोट से इनका मैसेज हमको मिला है। विजय बिहारी शर्मा हमारे साथ शामिल है, सीताराम कागरा है, बलवेश पनवार हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस वक्त प्रोग्राम में। और बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, कौन है, लालगिरी हमारे साथ हैं, प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं, प्रभाकर जोंडले हमारे साथ हैं, एचआर पांडे हैं, और हाजी मजहर का मैसेज भी हमको मिल चुका है। कहां से हमें मैसेज करते हैं, मऊ से इनका मैसेज हम तक पहुंचा है। वीना मस्कीन हमारे साथ हैं, शीशपाल वरदान है, अनंत वाडे हमारे साथ शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में। इसके अलावा कौन है, इसके अलावा है अनंता वाडे भी हैं, श्री कुरुश वाटे हमारे साथ हैं, कुमकुम जी हमारे साथ हैं प्रोग्राम में, सीताराम कागरे हैं, बोधराज खोरवाल हैं, धर्मेंद्र चीपा हमारे साथ हैं इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। और बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ, कौन है हमारे साथ, शीशपाल वरदान है, अनंत वाडे हमारे साथ हैं। हमारे साथ इतने सारे जो लिसनर्स हैं वो इस वक्त जुड़े हुए हैं फिल्म गोल पर, और इस वक्त एक गीत का

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
2: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही
3: www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
4: The Indian Navy invites online applications from unmarried male and female candidates for 10+2 BTech Cadet Entry Scheme Permanent Commission. Last date for submission is 18 June 2026. For more details, visit www.joinindiannavy.gov.in. The Indian Navy. Combat ready, cohesive, Atmanirbhar, safeguarding seas for a Viksit Samriddh Bharat. Join Indian Navy.
5: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना

0: जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है? पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

एफएम गोल्ड सुन रहे हैं आप। नसरीन है आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरे तमाम सुनने वाले जो इस वक्त एफएम गोल्ड के साथ जुड़े हुए हैं और अपने मैसेजेस हम तक पहुंचा रहे हैं। देखें अगला मैसेज किसका है। शेख मूसा हमारे साथ शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में, जिनके कई सारे मैसेज हम तक पहुंचे हैं। स्वरूप आनंद सज्जल हमारे साथ हैं इस वक्त प्रोग्राम में। सुदर्शन मुखी हैं, शामिल हो चुके हैं। संदीप हमारे साथ हैं प्रोग्राम में इस वक्त। देखें अगला मैसेज किसका आया है। रवि कुमार, राहुल रवि हमारे साथ शामिल हो चुके हैं प्रोग्राम में। सतीश अनेजा भी हैं, भारत भूषण भी हैं हमारे साथ जो कि इस वक्त एफएम गोल्ड को सुन रहे हैं। गुरमीत सिंह नीता हमारे साथ हैं इस वक्त प्रोग्राम में। राजेश वर्मा हैं, संदीप मक्कर हैं, राजकुमार डूडी हमारे साथ हैं, निखिल कागरा हैं, हरजिंदर शिंदे हैं हमारे साथ। भारत भूषण का हमें मैसेज मिल चुका है। दिनेश वर्मा हैं, पीएस नवकर हमारे साथ हैं, निट्टू मल्होत्रा भी शामिल हैं एफएम गोल्ड में इस वक्त, और लक्ष्मण लोखंडे हमारे साथ हैं, सतीश अनेजा हैं, उषा मोहन हैं हमारे साथ। राशिद हुसैन अंसारी का मैसेज भी हम तक पहुंच गया है। और देखें अगला मैसेज कौन है, हमें किसने भेजा है। दिग्दर्शन गौर भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं इस वक्त प्रोग्राम में। और मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आप एफएम गोल्ड से कितनी मोहब्बत करते हैं और इतने कम वक्त में भी इतने सारे मैसेजेस हम तक पहुंचा देते हैं। और एफएम गोल्ड पर ये वक्त है एक बहुत ही प्यारे से गीत का।

0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने वरिष्ठ अनुभवी प्रसारण कर्मियों से और जानते हैं उनके जीवन में आकाशवाणी की अहमियत, संस्मरण, कार्य और यादें। और इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं सोमदत्त शर्मा जी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत आभार प्रभा जी।
0: सर, हम आकाशवाणी के 90 वर्ष मना रहे हैं, तो ये 90 वर्षों की जो यात्रा है आकाशवाणी ने पूरी की है, इस यात्रा को आप किस रूप में देखते हैं?
1: देखिए, एक लंबा समय आकाशवाणी ने कई पड़ावों से होते हुए गुजारा है, वर्तमान तक पहुंची। पहले शुरू का जो दौर था वो आप देखिए कि निजी रेडियो स्टेशन का दौर था। बॉम्बे रेडियो क्लब या मद्रास रेडियो क्लब जैसे निजी संस्थान थे, प्रसारण करते थे और कम दायरे में लोगों को सुनाई देता था। वो उनके कंटेंट भी बड़ा सीमित होता था, मनोरंजन के लिए जैसे कार्यक्रम थे। तो वहां से शुरू होकर के भारत में जो रेडियो प्रसारण है वो वर्तमान तक पहुंचा है। कई पड़ाव बीच में आए हैं और उन पड़ावों में जैसे संगठित रेडियो प्रसारण जो हुआ 23 जुलाई 1927 से शुरू हुआ, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बनी थी उसके माध्यम से। फिर तीसरा पड़ाव आया कि जब 1930 में जब रेडियो का भारतीय राष्ट्रीयकरण हुआ, भारतीय प्रसारण सेवा के रूप में, तो ये दूसरा दौर था। तो वहां से लेकर के और आज जब हम FM और मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए हैं, तो ये एक लंबी यात्रा आकाशवाणी ने तय की है। और शुरू में रेडियो के रूप में और बाद में आकाशवाणी के नाम से या ऑल इंडिया रेडियो के नाम से, लंबे दौर में प्रारंभिक जो प्रसारण होते थे उसमें किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ड्राइवरों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मनोरंजन कार्यक्रम। बाद में फिर जब कार्यक्रमों का प्रसारण का दायरा बढ़ा, खासतौर से 1947 के बाद आकाशवाणी का विस्तार का दौर है ये। उस समय तो केवल 4 स्टेशन थे। आज अगर आप रेडियो स्टेशन की गिनती अगर करेंगे आकाशवाणी केंद्रों की
0: जी,
1: तो 73 प्राइमरी चैनल हैं, फिर कितने रिले सेंटर्स हैं, CBS सेंटर हैं, ये तमाम। इतना बड़ा जो विस्तार है, उस बड़े विस्तार में कंटेंट पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। वो खाली अब मनोरंजन के लिए कार्यक्रम नहीं करता, उसके कार्यक्रम देश भर की पूरी आबादी है, लगभग 97% आबादी को कवर करता है आकाशवाणी। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव इन वर्षों के दौरान आया है। इसके अलावा एक जो और बदलाव देखने को मिला है वो विधाओं को लेकर। शुरू में हम खाली गाने सुनते थे, है ना, बाद में धीरे धीरे धीरे धीरे फिर जो दौर शुरू हुआ तो वार्ताओं का दौर भी शुरू हुआ, फिर नाटक का दौर भी शुरू हुआ, फिर फीचर्स भी शुरू हुए। फीचर्स को रेडियो की अपनी विधा मानी जाती है
0: जी।
1: फिर उसमें भी एक्सपेरिमेंट होने लगे, जैसे नेशनल चैनल शुरू हुआ तो नेशनल चैनल में जो बड़ी वार्ताएं होती थी आकाशवाणी से, नेशनल टॉक्स जो होती थी वो 15 मिनट की होती थी, लेकिन नेशनल चैनल में आकर के वो टॉक जो है टॉकलेट्स के रूप में आ गई। 4.5 मिनट में जो टॉकर होता था वो सारी बात करता था। फिर इनके भी विभाग हो गए, इनका भी विस्तार हुआ, तो खाली टॉक नहीं रह गई तो बातचीत भी शुरू हो गई, परिसंवाद शुरू हो गए, परिचर्चाएं शुरू हो गई। और इसके अलावा जो और प्रयोग हुए वो आपके नाटक के क्षेत्र में प्रयोग हुए। अब नेशनल चैनल ने भी प्रयोग किए, वो भी 5-5 मिनट के भी नाटक ब्रॉडकास्ट किए। तो ये एक बड़ी लंबी यात्रा आकाशवाणी ने तय की, पड़ावों से गुजर करके ये आई है। और सबसे बड़ा जो काम है इस यात्रा में
0: जी,
1: वो भारतीय समाज को संबोधित करना है। ये कोई भी रेडियो प्रसारण आज की तारीख में आकाशवाणी के अलावा पूरे भारतीय समाज को संबोधित करता हो ऐसा नहीं है, ये इस यात्रा की उपलब्धि है।
0: सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आकाशवाणी जन जन की वाणी है। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि आकाशवाणी से आपका पहला परिचय कैसे हुआ और इस संस्थान ने आपके जीवन को किस तरह प्रभावित किया?
1: मुझे याद है 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा, उन दिनों में रेडियो होते नहीं थे, तो हमारे घर के बराबर एक रेडियो था पूरे मोहल्ले में।
0: अच्छा।
1: हम सब लोग अब समझते तो कुछ थे नहीं, बहुत छोटी उम्र थी मेरी उस समय, 10 साल की उम्र नहीं होगी ज्यादा से ज्यादा, तो हम न्यूज सुनने जाते थे कि नंदन पांडे जी उसमें थे या लोटिका रत्नम थी या हिंदू वाही थी, इस तरीके के लोगों को सब प्रसारण सुनने जाते। और उन दिनों में हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो ये मान करके चलते थे कि भाषा अगर सीखनी है तो रेडियो के समाज सुनने चाहिए, वहां से भाषा आप सीख सकते हैं। तो ये हमारा शुरू का दौर था जहां से हमने शुरू किया। तो मैंने तो वो दौर देखा है रांची में, जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई तो मैंने देखा कि एक ग्रामीण परिवार पति पत्नी दोनों रास्ते में जा रहे हैं और वो एक पान वाले की दुकान पर खड़े होकर रेडियो सुनने लगे, उन्होंने रेडियो देखा भी नहीं।
0: अच्छा।
1: जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो उन्होंने पान वाले से पूछा कि भाई ये जो बोल रहे थे ये कहाँ है, उनको मैं देखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये इसके भीतर बैठे देखा। तो ये वो दौर हम लोगों ने देखा है
0: जी,
1: और वहां से निकल करके आज तो जन जन तक सबके मोबाइल में रेडियो,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सब रेडियो सुनते हैं, कार्यक्रम सुनते। तो पहला जुड़ाव जो है वो न्यूज से हुआ और धीरे धीरे फिर उसका विस्तार हुआ, और वहीं से एक आकर्षण भी पैदा हुआ कि कभी न कभी जब पढ़ने बैठता था तो एकांत होता था वहां, तो मैं अभ्यास किया करता था रेडियो न्यूज पढ़ने का। लेकिन ये कैसे पता था कि आगे चलकर कि मुझे आकाशवाणी में ही नौकरी करनी है, क्योंकि मैं तो शुरू से ही सोचता था कि मुझे तो पढ़ाने के लिए पैदा हुआ हूँ, पढ़ाऊंगा, थोड़े दिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी, लेकिन नौकरी तो आकाशवाणी में मिलनी थी वहां।
0: सर, जैसे कि आपने बताया बचपन की घटना के रूप में कि आप सुनते थे रेडियो और गाने वगैरह भी आपने सुने हैं, तो क्यों ना आपकी पसंद का हम गाना सुने।
1: बिल्कुल, लता मंगेशकर जी का कोई गाना अगर सुना सकते हैं तो सुनाइए
0: जी।
2: ये

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग और आज हमारे साथ हैं सोमदत्त शर्मा जी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। सर, आगे बढ़ते हैं और ये जानना चाहेंगे कि आपने आकाशवाणी में रहते हुए भारत की संस्कृति, लोक परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। इस दिशा में

0: आपकी सोच क्या रही और कैसे आपके मन में ये भाव पनपा कि मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ये कार्य करना है, तो उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं।
1: देखिए, मेरी पहली पोस्टिंग रांची में हुई थी। रांची आदिवासियों का इलाका है और वो पुराने बिहार में पड़ता था, तो वहां मुझे आदिवासी क्षेत्रों में जाने का बहुत मौका मिला। और मुझे अभी भी याद है कि आकाशवाणी रांची में एक कांडे मुंडा नाम के सज्जन हुआ करते थे, वो सीईओ भी थे एफआर ओ के। मैंने उनको कभी किसी से बोलते बात करते हुए नहीं देखा।
0: अच्छा।
1: या तो मैं देखता था कि वो स्टूडियो से बाहर की तरफ आ रहे हैं या ढेर सारे बगल में दवाई हुए स्टूडियो की तरफ जा रहे हैं। एक दिन मैंने उनको मांदर बजाते हुए सुना, वो अकेले बजा रहे थे स्टूडियो में बैठ के, और मुझे लगा कि ये आदमी समाधिस्ट है। बिल्कुल मेरी रुचि उनमें बढ़ गई और मैंने उनके बारे में जानना शुरू किया, तो पता चला कि वो मुंडारी के अधिराज हैं अपने इलाके के। मुंडारी के भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते थे। नई कविता वहां से शुरू होती थी, नया नाटक मुंडारी का वहां से शुरू होता था, नया उपन्यास वहां से उनसे शुरू होता था। और मुंडारी समाज का, समुदाय का कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होता था जो बिना उनके गीत के पूरा हो जाए। तो एक तो उनके कारण से, दूसरा मैंने देखा कि हमारे यहाँ रांची में जो रिसेप्शनिस्ट थे उनका नाम था जस्टिन एक का। एक दिन मैंने देखा कि जो रांची की डेवलपमेंट कमिश्नर है वो उनके पास बैठी है। एक दिन बात आई गई होगी, आई होंगी, बैठी होंगी। दूसरे दिन फिर देखा, तीसरे दिन फिर देखा, मैंने कई दिन तक उनको देखा और एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, चार घंटों बैठे देखा। तो मैंने एक दिन एक कभी से पूछा, एक का साथ पूछना तो नहीं चाहिए, ये डेवलपमेंट कमिश्नर आपके सामने बैठ के क्या करती है? तो उन्होंने कहा कि ये मेरे ऊपर रिसर्च कर रही है।
0: अच्छा।
1: आकाशवाणी का रिसेप्शनिस्ट
0: जी,
1: जो उराव और जिसको कुडुख भी बोलते हैं, उस भाषा का अधिराज बैठा है और वहां की डेवलपमेंट कमिश्नर उस रिसेप्शनिस्ट के ऊपर रिसर्च कर रही है। तो मुझे लगा कि कुछ पोटेंशियल यहाँ है। उसके बाद फिर दो कार्यक्रम शुरू हुए, एक का नाम था वनांचल, दूसरे का नाम था साहित्यिकी। इन दोनों कार्यक्रमों का स्वभाव एकदम अलग था। एक में जो वहाँ के अलग अलग भाषा बोलियों, तकरीबन 32 भाषा बोलियां वहाँ बोली जाती है रांची में, जिसमें से 9 या 10 का प्रसारण होता है, बाकी का ओकेजनली प्रसारण होता है। तो मैंने वहाँ देखा कि जो बड़े साहित्यकार अलग अलग भाषाओं के माने जाते थे उनको वैसे तो कोई नहीं जानता था, लेकिन अपने समाज में उनकी एक अहमियत होती थी, तो मैं उनके बड़े लंबे लंबे इंटरव्यू करता था।
0: अच्छा।
1: मैं ये जानता था कि ये आज नहीं तो कल इनका महत्व होगा, ये सारा साहित्य जो है सामने आएगा, लोग इन पर रिसर्च करेंगे, तो इनके बारे में प्रामाणिक जानकारी लोगों के पास होनी चाहिए, वो आकाशवाणी के पास होगी। और दूसरा, मैंने देखा कि मैं लोगों की रचनाओं के पाठ करवाता था उससे, और एक समय ये स्थिति बन गई आकाशवाणी में उन दोनों कार्यक्रमों की, जो साहित्यकार उसमें ब्रॉडकास्ट हो जाता था उसको ये मान लिया जाता था कि ये स्थापित साहित्यकार है फला भाषा का। तो ये वहां से मेरी रुचि बढ़ी कि जिस आकाशवाणी का रिसेप्शनिस्ट इतना बड़ा हो साहित्यिक दृष्टि से कि वहां की डेवलपमेंट कमिश्नर उसके ऊपर रिसर्च करे, वो विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता था कुडुख भाषा को लेकर के, तो ये एक अद्भुत अनुभव था। अद्भुत अनुभव के कारण से ही शायद उस लोक संपदा महापरियोजना का बीज मेरे भीतर पड़ा, क्योंकि मैंने जंगल में एक आदमी को ऋग्वेद का अनुवाद करते हुए मुंडारी में देखा। अब वो अपनी जिंदगी में 25 ऋचाओं का भी अनुवाद कर जाता तो बड़ी बात होती। उन दिनों मैंने सुना था कि महादेवी वर्मा जी ऋग्वेद का अनुवाद कर रही हैं हिंदी में। अब कहाँ हिंदी की इतनी बड़ी कवित्री और कहाँ जंगल में बैठा हुआ मुंडारी जो लोक भाषा में ऋग्वेद का अनुवाद कर रहा है। तो वहां से कहीं ना कहीं वो चीज बैठ गई थी दिमाग में कि इन सब चीजों के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। उन्हीं से आगे चलकर के लोक संपदा परियोजना की नींव पड़ी।
0: सर, यही मैं जानना चाह रही थी, लोक संपदा के माध्यम से देश की लोक संस्कृति, लोक कला और परंपराओं को मंच देने का विचार कितना चुनौतीपूर्ण था, और इसको करने के बाद आपको संतोष भी मिला होगा कि आपने इन परंपराओं को, लोक संस्कृति को जागृत करने में, उसका विस्तार करने में, संरक्षण करने में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं।
1: देखिए, ये काम बड़े मजाक में शुरू हुआ था, आपको सुन के आश्चर्य होगा, मुझे अभी भी याद है, शाम का समय था, कोई 4-4.5 बजे हो गए। उन दिनों हमारी DDG हुआ करती थी फाइनेंस, वो DG के यहाँ से निकल करके आई, तो मैंने ये योजना के बारे में पता है कि देश में, दुनिया में जितने बड़े धर्म हैं उनमें सबकी उपस्थिति भारत में है, और देश में तकरीबन कोई 600 बताता है, कोई 450 बताता है, इतनी भाषा बोलियां, रूप बोलियां हैं, जनजाति बोलियां हैं, इन सबके बीच में 3 तरह के गीत हमको मिलते हैं, एक गीत मिलते हैं जो जन्म से लेके मृत्यु तक के संस्कार गीत,
0: संस्कार गीत।
1: दूसरे मिलते हैं अदर देन संस्कार गीत, उनमें आपके नदियों से जुड़े गीत हैं, पर्वतों से जुड़े गीत हैं, मेले ठेलों से जुड़े गीत हैं, व्यक्ति विशेष से जुड़े गीत हैं, वर्षा के गीत हैं, ऋतुओं के गीत हैं, और बहुत तरीके सैकड़ों किस्म के गीत देश में गाए जाते हैं। और तीसरी है लोक गाथा है, जैसे उत्तर प्रदेश में एक पुस्तक आई है डॉक्टर नरेश बंसल, मेरे गुरु भी थे
0: जी,
1: उन्होंने इस तरीके की 54 लोक गाथाओं का संग्रह किया है, तो साहित्य अकादमी में वो पुस्तक रखी हुई है। उसमें आपके रूप बसंत है, उसमें आपके नरसिंह मेहता का बहाव है, शंकर पार्वती का ब्याह है, ऐसी तमाम दुनिया भर की लोग, ये जो चीजें थी इनको संरक्षित करने की जरूरत थी, ये मैंने उनको बताया, तो उनकी बात समझ में आ गई। तुरंत फुरंत एक छोटी सी कमेटी बनाई गई, उसमें हम 3 लोग थे, ज्योति वो खुद थी चेयर कर रही थी, तो वही छोटी सी बातचीत हुई, उसमें विरोध भी हुआ, लेकिन बाकी सबको ये योजना पसंद आई। तो मैडम ने कहा कि आप इसका एक प्रपोजल बनाइए, उसी समय उसका प्रपोजल बना, उसी प्रपोजल को लेकर के वो शहरयार साहब हमारे जो डीजी थे उस समय, वो उनके पास लेकर के गई, और ये तुरंत उनकी समझ में आ गया, उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया उसको अप्रूव कर लिया, वहां से ये योजना शुरू हुई। अब चुनौतियां उसको वहीं से ही शुरू हो गई कि इसको कैसे कार्यान्वित करना चाहिए, उसके लिए नियम बनाने थे, लोगों को पैसा कैसे दिया जाए। तो पहला विरोध तो यही हुआ कि भाई हम पैसा देंगे तो चेक से कैसे देंगे, आदिवासी इलाकों में अगर हम जाएंगे तो उनको कैश देना पड़ेगा, उनका तो खाता होता नहीं है। लेकिन मुझे याद है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए थे एडीजी होकर, उन्होंने सुझाव रखा कि नहीं, हम जनधन खाता खुलवाएंगे, पैसा किसी को हाथ में नहीं देंगे और ये पैसा उनके खाते में ही जाएगा, माने हम सरकार का भी काम कर रहे थे और अपना काम कर रहे। तो ये इस तरीके से योजनाएं शुरू हुई और पूरे देश में ये कार्यक्रम लागू किया गया। लेकिन स्टेशन की दिक्कत शुरू हो गई थी कि वहां लोग नहीं थे, लोग थे तो बहुत कम थे, जैसे शांति निकेतन स्टेशन था तो वहां उस समय कोई रेगुलर पैक्स नहीं था, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 100 स्टेशन ऐसे थे जिन्होंने परेशानी भुगतते हुए भी काम किया, और कुछ लोगों को तो बहुत मजा आया, उन्होंने बहुत काम किया। तो चुनौतियां शुरू से ही थी, क्योंकि उनको ये लगता था कि भाई कैसे पहले सर्वे करने जाएंगे, सर्वे करने जाने के बाद फिर लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे, लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर गीतों को आइडेंटिफाई करेंगे, परंपराओं को और रीति रिवाजों को आइडेंटिफाई करेंगे, तो उनके लिए बड़ा टास्क था। उस बड़े टास्क में लोगों ने फिर उनकी प्रामाणिकता का मसला था कि जो गीत रिकॉर्ड होकर के आएंगे वो कैसे गीत होंगे, प्रामाणिक होंगे कि नहीं होंगे, जैसे आजकल सिनेमा के गीत भी मिल जाते हैं ना लोकगीतों के,
0: लोकगीतों में मिल जाते हैं जी।
1: तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती से पार पाने के लिए हम लोगों ने 3 स्तर पर कमेटियां गठित की थी, एक तो स्टेशन के लेवल पर, ताकि स्थानीय स्तर के जो विशेषज्ञ होंगे वो ये बात तय करेंगे कि ये गीत प्रामाणिक है या नहीं है। फिर वहां से निकल करके दूसरी चुनौती हमारे सामने थी कि हम स्टेट लेवल पर हमने फिर एक दूसरी कमेटी बनाई विशेषज्ञों की, वो पूरे प्रदेश के गीतों को आइडेंटिफाई करते थे कि ये प्रामाणिक है और ये इनमें शंका है। फिर तीसरे स्तर पर हमने डायरेक्टरेट लेवल पर एक कमेटी बनाई जिसमें हम उन भाषाओं के लोगों को बुलाते थे और तय करते थे कि गीतों की प्रामाणिकता का स्तर क्या है। तो ये अपने आप में, क्योंकि देश में तकरीबन 450 से लेकर 600 बोलियां तक बोली जाती हैं, इतने लोगों को डायरेक्टरेट में बुला पाना तो संभव नहीं था, तो स्थानीय स्तर पर लोगों की बात को प्रामाणिक माना गया, फिर स्टेट लेवल पर लोगों की बात को प्रामाणिक माना गया, स्टेशन ने जो व्यवस्था की, फिर प्रांतों ने जो व्यवस्था की, उन व्यवस्थाओं के आधार पर ही हम लोग निर्णय लेते थे कि कौन से गीत प्रामाणिक है, कौन से गीत प्रामाणिक नहीं है। तो ये 2 चुनौती थी। तीसरी चुनौती आंतरिक चुनौती थी। आंतरिक चुनौती ये थी कि लोगों ने, कुछ मित्रों ने हमारे ने कहना शुरू किया कि ये काम तो रेडियो का है ही नहीं जो काम आप कर रहे हैं। तो मैं कहता था भाई और कौन सी एजेंसी है जो ये काम करेगी अगर आकाशवाणी ये काम नहीं करेगी, तो क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क किसी के पास नहीं है जितना आकाशवाणी,
0: विरासतों को बचाना भी आकाशवाणी का ही काम है,
1: ये आकाशवाणी का काम है। तो जो स्टेट लेवल की एजेंसी होती है वो अपने स्टेट का करती है, लेकिन समग्र रूप में जो काम करने का दायित्व है वो आकाशवाणी को निभाना चाहिए। फिर चौथी जो चुनौती थी वो ये थी कि लोगों ने कहा कि ये तो ब्रॉडकास्ट वर्दी नहीं है, क्योंकि हमारी शर्त थी कि हम ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं करें, और दूसरी हमारी शर्त थी कि जो पूजे हुए कलाकार हैं, जो प्रोफेशनल कलाकार हैं, हम उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, भले ही वो कितने ही गीत जानते हों, हम उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। सामान्य तरीके से उनकी रिकॉर्डिंग होती रहती है, अलग मसला, लेकिन इस योजना के तहत हम उनकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो दोनों तरफ से ये एक विरोध की स्थिति बनी। ये रिकॉर्डिंग घर घर जाकर के होती थी, अब घर घर जाकर के होती थी तो घर में जो वातावरण होता था उसी एम्बियंस में होती थी, अगर घर में गीत के ऊपर ढोलक के ऊपर चम्मच बसती है तो चम्मच ही बसती थी उसमें। जो प्रोफेशनल कलाकार होता था वो तो कहता था तो उसको सिंथेसाइजर भी चाहिए और तबला भी चाहिए और ये भी चाहिए वो भी, और जैसे ही सारी चीजों का इस्तेमाल करते तो उनकी बीट बदल जाती थी।
0: तो सर आपने इतनी सारी चुनौती को झेलते हुए उन सबको साइड करते हुए आप आगे बढ़े और भारत की जो संस्कृति है और भारत के जो संस्कार हैं उनको संस्कार गीत के माध्यम से आपने संजोया है। तो सर अब बातों को आगे बढ़ाते हैं।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग और आज हमारे साथ हैं सोमदत्त शर्मा जी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। सर, ये जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी के बदलते स्वरूप, जो पारंपरिक रेडियो से डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक का जो सफर चल रहा है आकाशवाणी का, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं?
1: देखिए, बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती देश में जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार हुआ है, जिसमें एफएम स्टेशंस भी हैं, उसमें प्राइवेट स्टेशंस भी हैं, उसमें आकाशवाणी के स्टेशंस भी हैं। आकाशवाणी की एक परंपरा रही है और वो रही है प्रामाणिकता की, जिसको उसने आज तक बचा करके रखा है।
0: जी,
1: जैसे मैं एक उदाहरण सिर्फ आपको देता हूँ। आकाशवाणी के एफएम चैनल जब शुरू हुए, उसके साथ साथ प्राइवेट चैनल शुरू हुए, उन्होंने कार्यक्रम अपने हाथ में लिया। वो कार्यक्रम ये था कि भाई आप इस रास्ते, दिल्ली जैसे शहर में आप इस रास्ते से जाएं या न जाएं। वो क्या करते थे कि अपना जो उनका कोई अनाउंसर होता था, उनका जो कर्मचारी होता था, वो किसी से भी कह देते कि भाई आप जहां जा रहे

0: वहाँ के बारे में जरा कुछ हमको हाल बता दीजिएगा तो हम यहाँ उसको ब्रॉडकास्ट कर देंगे यहाँ
1: ट्रैफिक की जानकारी जैसे
0: ट्रैफिक की जानकारी
1: जी जी।
0: वो कई दफे तो जो हमारे अपने लोग जिस रास्ते का वो बखान कर रहे होते थे उसी रास्ते से निकल रहे होते देखते थे वहाँ तो कह रहे हैं कि इधर रास्ते से न जाइए यहाँ बड़ा जाम लगा हुआ है और रास्ता तो पूरी तरह खुला हुआ होता था। लेकिन आकाशवाणी ने जब ये कार्यक्रम शुरू किया उन्होंने वाकायदे ट्रैफिक पुलिस के साथ संपर्क किया और उसकी प्रामाणिकता को वाकायदे बचा करके रखा। जहां जो स्थिति थी वैसी ही स्थिति बनती थी तो ये जो प्रामाणिकता थी ये आकाशवाणी की एक अपनी धरोहर है जिसको बचा करके रखा।
1: तभी तो सर आकाशवाणी पर लोगों को विश्वास है और वो आकाशवाणी ही सुनना चाहते हैं क्योंकि पता है ना सही जानकारी दे रहा है आकाशवाणी।
0: जी जी जी। दूसरी चीज क्या है उद्देश्य का फर्क। आकाशवाणी सबके लिए कैटर करती है सबके मनोरंजन का ध्यान रखती है सबको सूचना मिले इसका जानकारी सबको शिक्षा मिले इसकी जानकारी है ना ये दायित्व का निर्वाह करते हुए आकाशवाणी काम करती रही है।
1: सर आकाशवाणी 90 वर्ष पूरे कर रहा है और देश भर में बहुत से आयोजन कार्यक्रम इस संबंध में हो रहे हैं तो इस अवसर पर देश भर के जो श्रोता हैं प्रसारण कर्मी या युवा ब्रॉडकास्टर हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे।
0: पहली चीज तो भाषा पर काम करने की बहुत जरूरत है नंबर एक क्योंकि भाषा ही वो माध्यम है। भाषा का स्तर बचाए रखने की जरूरत है। ये प्रयोगशीलता का जमाना है नए नए प्रयोग हो रहे हैं नए नए प्रयोगों के माध्यम से लोगों को आकर्षित करना और उनके माध्यम से कंटेंट को पचाना।
1: सर आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और आकाशवाणी के बहुत लंबे इतिहास को आपने जो देखा और आपने जो काम किया उसके बारे में बताया। चलते चलते आपकी पसंद का कोई गीत आप सुनवाना चाहते हैं हमारे श्रोताओं को।
0: मन्ना डे का कोई गाना सुनाएंगे।
1: बिल्कुल।

नमस्कार फौजी दोस्तों, कार्यक्रम शौर्य गाथा में मैं सीमा झा आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का यह विशेष अंक संगीत जगत के उस महान फनकार को समर्पित है जिनकी मखमली आवाज ने करोड़ों दिलों को सुकून की छांव दी, जिन्होंने अपनी आवाज के कारण लाखों दिलों पर राज किया। ये जिस अभिनेता के लिए गाना गाते थे वो मानो उन्हीं का स्वर बन जाता था। लगभग 15 से अधिक भाषाओं में 40,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। आपकी उत्सुकता को कम करते हुए मैं ऐसे महान पार्श्व गायक का नाम बता देती हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब की। दोस्तों, आज एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब की जयंती है। ये पहला गाना इन्हें समर्पित करते हुए सुनते हैं फिल्म लव का बेहद सुरीला गीत। संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने और स्वर दिया है एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा ने।

फौजी दोस्तों, आंध्र प्रदेश में जन्मे एसपी बालासुब्रमण्यम जी को बचपन से ही धुनों से मोहब्बत थी। आगे चलकर वे भारतीय संगीत का वो सूरज बना जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकी। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक गायकी में अपना करियर बनाने से पहले इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था, मगर वहां इनकी सेहत थोड़ी बिगड़ने लगी और इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद इन्होंने संगीत की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया और कई प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया और पुरस्कार भी हासिल किया। 15 दिसंबर 1966 को एक पार्श्व गायक के रूप में इन्होंने शुरुआत तेलुगु फिल्म के गानों से की थी। इसके बाद इन्होंने दक्षिण भारत के कई फिल्मों के लिए गाने गाए। दक्षिण भारत में इनकी गायकी और प्रसिद्धि को देखते हुए हिंदी फिल्म उद्योग से भी इन्हें कई अच्छी फिल्मों के ऑफर आने लगे। जानेंगे इनकी पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी इस गीत के बाद, जिसे हमने फिल्म वंश से लिया है। स्वर दिया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम जी ने।

फौजी दोस्तों, आप देश के जिस भी कोने में हो, जिस भी मोर्चे पर तैनात हैं, उम्मीद है संगीत की यह महफिल आपको अपने घर आंगन और अपनों के करीब होने का एहसास दिला रहा होगा। आखिर संगीत ही तो है जो सरहदों के फासलों को कम कर दिलों को जोड़ता है और थके हुए मन में एक नई ऊर्जा फूंक देता है। दोस्तों, जब बात एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की हो रही हो तो आंकड़े भी छोटे पड़ जाते हैं। उन्होंने अपने बेमिसाल करियर में 40,000 से ज्यादा गाने गाकर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसे छू पाना भी नामुमकिन है। इनका पहला हिंदी गाना 1981 में आई कमल हसन के फिल्म एक दूजे के लिए थी और हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म में इनके द्वारा गाए गीत कितनी बड़ी हिट साबित हुई थी। इस गीत के बाद

डी बालासुब्रमण्यम हिंदी फिल्म उद्योग में रातों रात एक चमकता सितारा बन गए और इसी के साथ इन्हें कई बड़े सुपरस्टार के लिए गाने के अवसर मिलने लगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए सुनते हैं फिल्म एक दूजे के लिए का यह बेहद लोकप्रिय गीत, जिसे स्वर दिया है एसपी बालासुब्रमण्यम ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और शब्द रचना है आनंद बख्शी साहब की।

दोस्तों, हिंदी सिनेमा में इनकी पहचान 90 के दशक में सुपरस्टार सलमान खान की आवाज बनकर उभरी। इन्होंने कई फिल्मों में सलमान खान के गानों को अपनी आवाज दी और सभी गाने हिट होते गए। जब वे गाते थे तो लगता था जैसे शब्द खुद ब खुद मुस्कुरा रहे हों। उनकी आवाज की मिठास सीधे दिल पर दस्तक देती थी। इन्होंने प्रेम की कशिश, विरह का दर्द और जीवन के उल्लास को अपनी गायकी में इस कदर पिरोया कि उनका गाया हर एक गीत हमारे जीवन की यादों का हिस्सा बन गया। आवाज की दुनिया के वो शहंशाह चले गए, मगर दिलों में धड़कते वो जज्बात छोड़ गए। आज भी जब कोई दिल धड़कता है, जब कोई गुनगुनाता है, तो इनकी आवाज हर संगीत प्रेमी के दिल में जिंदा होकर गूंज उठती है। चलिए सुनते हैं उनकी जादुई आवाज में डूबा यह अगला नगमा, जिसे हमने फिल्म मैंने प्यार किया से लिया है।

दोस्तों 80 और 90 के दशक में इन्होंने हिंदी सिनेमा में कई फिल्मों के लिए गाए, जैसे गुपचुप, चोरी चोरी, एक ही भूल, सागर, 100 डेज, मैंने प्यार किया, द जेंटलमैन, पत्थर के फूल, साजन, लव, हम आपके हैं कौन, चेन्नई एक्सप्रेस। इन्होंने न सिर्फ अपनी गायकी के जरिए नायकों को अपनी आवाजें दी, बल्कि ये एक डबिंग कलाकार अर्थात वॉयस आर्टिस्ट भी थे। इन्होंने कन्नड़ संगीतकार के लिए 12 घंटे में 21 गीत गाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। दोस्तों कहा जाता है कि इन्होंने एक दिन में 19 तमिल गाने और एक दिन में 16 गाने हिंदी में रिकॉर्ड किए हैं। साथियों, वक्त बदलता है, सदियां बदलती हैं, लेकिन संगीत के आसमान में कुछ आवाजें ध्रुव तारे की तरह होती हैं जो हमेशा अपनी जगह पर रहकर चमकती और राह दिखाती रहती हैं। इनकी आवाज भी एक ऐसी ही अमर धरोहर है। इनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि कुछ मिनटों में इसे नहीं समेटा जा सकता। एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब आज हमारे बीच नहीं है, मगर वे अपनी गायकी के जरिए आज भी हमारे दिल में बसे हुए हैं। ऐसे महान कलाकार को शत शत नमन करते हुए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, जिसे हमने फिल्म हम आपके हैं कौन से लिया है।

इसी के साथ हमारा आज का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहती हूँ। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए नमस्कार, जय हिंद।

0: life se chogule ira pa magi ba thobo pong bare chogule bi mela e pache hinja sa je phone modo bong khuni ye ma che mela
1: e padang le a je phone
0: no phone modo bong mela alo hen hinja ha je alo sports lab sang je ningwa mi biru gora mela khuni aba health ang nu ba pong ang pek mela confident in pong pek nang discipline in pong ang pek ekirege हेमबरक में नंग से स्पोर्ट लेचे टीम वर्क अंग हुरु मिला लीडरशिप अंग डेवलप पों मिला एंड है नंग एक एक हिंजा आले जब लाइफ इन द अनप्रिडिक्टेबल पाक मिला हिंगमानी आजन अनप्रिडिक्टेबल आजन थियांग पामस सुक में देते हैं मिला एक एक अखें चियाबु चियांबु हता मिला हिंगमानो हें चियांबु हारें पे हनंग चो मस्त्रु बापों पाक माने स्पोर्ट लेचे अब कॉन्फिडेंस आज आज खोदे
1: patients khannang ani ara thobojok masuk te cha cha ke la pan ara kusing ani tumgara ara aloba ye misik to kujai ani powen cho ha ra men nang hinja no do aloba kusang cho ben ha jasa mun ing ha bo khe kan ha I patang li oga pong kan oga chok mane himsigang wa yung ma wa gar aro pang pe sa thang be hema bong la wa la ji the bong la khan
0: thiang a tha me bong fidi health in se abo deteriorate pong ra pik pa man ha
1: kin ne bikin jan sa la ra pe kan I pa ke jok mara khale jok le su ma ji o e ma sa re tagi la mang cha cha ma yek pa wa ba pan kom sik sa mari yu khwa bi rang wa okay ke men su ma sa ha e ma sa ha o pa mana thakum ba la ti physical नहिनिंग वा पामन आरो मेंटल लेपान नो बचोक मारे लागी जे चाट ले लखफा आखिरि केतुबे
0: चाट ले ग पामन अब फिजिकली नो मेंटली स्ट्रांग पोंग मार लागी जे चाट ले जे बयंबा नु ने मे चातु मेलो आंदिन पातुम सुंगवांग वा मेलो चाट ले जे कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ मेलो हेनांग हेन्ना पामा डिसिप्लिन हा मेलो दुबो पोंगांग बे अजरे किरके फोकस अंग पोंग मेलो हेकिरके अब टीम वर्क मेला टीम वर्क लेन यो पोंग हेना एके दिके खुनी ल मजे अब पामन लति लीडरशिप अंग लीडरशिप एंड क्वालिटी अंग धोबो पोंग अंग पिक मेला कन पामन कन उ याचे क्वालिटी हा पामा कन इन चल हिंग मनो ए पामन एक पावा हिंग मनो सक्सेस पोंग मारे लागि एक पावा पामा या अजे या पामा लति नु बामन आय पामन सक्सेस पोंग मे पोंग केला बो नु बामन आ पोंग मा लागि एक पावा कन कन क्वालिटी हासे
1: alo cha cha mele lathi thakum ba pan lathi physical ba mana kon pa no correcting ta na kon physically ani yam du mi ba bung gar khanu gudang dang nahi ningwa ong ta phen ba iching ha me da nen ta phen ba iching pan ha chok ma de ma pan me da nen ar cha cha ma wa male ana tho khone ta kon wa ma ne yem la lek mar wa men
0: se ar pa ba english chu sports le
1: le je ar na english a jo ke ra pan kamo kusing ani tumgara cha cha men la thi yek baba hekyang kon la thi thakum ba no nehining wa thobo jok mare lagi yamba lakpa ke tuge ra ba kamo kusing ani tum hekyang ara men chuma lo mo chat le akke ba panglo cha tu ba pang no san pa mana confidence no lamdon ba leadership pa mana lamdon ba chu akhir kang abi be pho ma lai kol le akhir chat le lakpa ke tu
0: चाहतीले चाहिँ मलाई मेन्सु महा म मतलब लिडरसिप हा लेन स्किल इन थोबोचुको पिरो मेरो कन्फिडेन्स इन एकरिके मलाई निसामसा चाहिँ पापमाया मेन्सु मसा हा मेलो हुरुसी अब रेस्पोन्सिबल पोङ मे म पोङ मे म हुस डिसिजन मेकिङ हो एकरिके वर्किङ टिम हो आखिर वर्क छु मबा हेन पानाहरू हजुर लुप हो एकरिके एकरिके अब चियाङ बुहा फेस चुक मे म
1: कुबे
0: हंचोक माबा हेन पाना हुरुसी हेकिरके अबांगे म अब इ पा अमक मरा को याम अमक मगरा छे स्पेशली पोवेन छा औ पोवेन छा वा म छे लु म छे पा मना सेल्फ बिलीफ मे बोंग ने सेल्फ एस्टीम जे लो पोंग कर चा चा मगरा छे अब सेल्फ एस्टीम या पा म सेल्फ बिलीफिंग अंग तो पोंग अंग पे न सांता अंग पे ग सुक तुम अज कतुम के रा बा पोंग चा दे छे अज अज अज
1: थोबजोगु पामना
0: द थोबजोगु
1: बिल्चोगु रबेन कुसिङ
0: पोजिटिभ थोगु पिरो थोबजोगु पिरो
1: र चाचा मले आखोदेत मेन्चुमास र खन जियामबुहा तागर खन आकाङ गलति फेस छु पामना खेन पान हा
0: टर्न अफ मे जोगु नन चाहिँ अब फेस छुगु
1: हजुर अब पान हे के जका कम्बा छुगु कम्बा नान द कम्बा सुक्तुङ के रबेन लथि ख पाङ नसान अबि हेकेन वेर तगी लम आङ चोक मा पा मा केरा बेन कुसिंग अभी गर खान लजे लते आक अभी गर बपानंग लते चाति ले थुबुजु गर बपान कुसिंग अनि तुमेनी
0: हजुर सुकामा

0: Heke karo e masaha aken pangbe ten ha o pa mana sumaji o caca ma menu nan kero ba latik saksing wa ko kon ha akeri kan kube hon e masaha bangi cok ma mesuk tube.
1: Kon panon se awa specially kalen kube hon inche tei pung masuk bela je ani ge je alo tiko pa ma melo latik awareness अब
0: बा
1: जो बामा हो अवार्नेस इन्चे अजुर चुकमा बङ मतलब स्पोर्टलेन या बामा चार्टलेन बेनिफिटिन मेलो कुनले म अब बामा बङ मेलो एकिदिके इन्क्वायरीज चुकमा बङ इक्वल अपर्चुनिटी फर बॉयज एन्ड गर्ल्स बोथ यम बिचा सानो मेन्छ मा छै इक्वल अपर्चुनिटी इन पीप मा बङ मेलो
0: अजुर
1: लच्छा गुबेन देन नॉट ओन्ली इन स्पोर्ट बट इन एजुकेशन बामा न एकिदिके एकिदिके safety sport facility and coaching hekeba anamam pi mapong lo hekideke aloko yami amak magaram la for example medicom amak magaram la akin successful says a successful athletes pa mamela role model heke hinja me ma asuk tum mela hekideke ob khuni himan amatwang ya school lifestyle ya khuni len achievement hani zwang mela khuni anse aba as example as a role model hekideke khuni lumwang ala correcting wa positive correction ma pa mana tama sutto khenkeraba khen khen parikpa pa mana aba solution ha je kuma suk
0: kanje moranje ma shiksha ma patu bai se ara ani nanchuma saha tagi pho ma se lagi latik sumaji reng yam bai da pong hunchi changjang wa pi ma se pong ara chat le kokke ba bong kokke ba ajo ke ra pa na ang chi sikum ne hini ba yak ma pi ma se bong ke ra ba pa na yung ma bong ke ra ba kusin ani tum खेनगुदांगदांग लथि आरे हुपुप चाचामा काबिया पंगे पापा माने इंटरनेशनल
1: इंटरनेशनल प्लेयर आले माजे
0: मेरी कमले कुसिंग आबिरे गर खुने ताखेन दुखे जोगुरा तगी पोरे आ मिंगसो थगु आबांगे टेन लेमिंग थगु गर खेनगुदांगदांग खामगुरे लथि टेमेन लाजेर मिंगसो इन तगुआंग थांगके तुबा पानहांग क मुकुसिंग आनि तुमगर हेकेरिके आबांगे तगी पोमांग आबांगे दोंगदांग पांगबे थांगबे लाजे रे मिंगसो तक मसुक तेके रब पान कुसिनि तते हेके खनले लथि कुसिंग लामा कुबे हनचो मसुक तेके रब पान क मुगा कुसिनि तुम हके के आरो इ पा तंगलिक पांगबे ओ ए मा सारे चातो लक लामा रे लागि थे दे चे आमुहा मेदो मुबे
1: अ कनिन जे लथि पा मना एक पसेन ला पा मना सोसाइटी या सुमजी मा ओम मा गरा मेला
0: ओ
1: पांगबे ओ पा मना पांगबे थांगबे ओ जे थेमपोंग मेला जे स्पोर्ट्स लैंड फैसिलिटी दो मेबोंगनिन ओ मेबोंगनिन जस्ट एग्जांपल स्टेडियम हे मेबोंगनिन हॉल हे फैसिलिटी मेबोंगनिन अज प्लस हेंगो पोखे पोखे प्लस इक्विपमेंट डांग मेबोंगनिन प्रॉपर
0: अजर
1: गोमेनिन
0: अरे युखफोरे निसाम हिमु आम्बी गरे खदेप्पा मेंगरा खोंदे
1: नाजे
0: सिसु माजी बा रेंगसो बा थोबो मा जिल्ला कोदे मेंगो जे खोमदे कोन हाल जे आंबो बा
1: कुछ हेनांग पोखे पोखे अंत अब कुबा कुबा ओचे पा म मलो अब हिम सयंग लियांग या पा म सोसाइटी लियांग रिस्ट्रिक्शन चोगु बा बोंग पा मना आखिन दे मजे नि मासुक टेट मेलो मेंचु मा जे खेने म जाते ने कुसिंग मेरी कॉम्प्लेन मेलो कोनी हिम मन लमंग अब कोनी हिम लंग मेलो खेने गो मेंचु मा साबा मे जाते ने गोनिंग गो मेलो किंगा लाइन फेटला मेलो खेने मे किम मे बोंग ने कन करबा अब मेंचु मा म जे अब कन परबा कन पान लि हाले चोगु लियांग पा मना
0: नखेन जे लक लामा मेंसुक ने
1: लक लामा मेंसुक दिन मेंचु मा
0: अलो पांगबे साबा नुगुदोंदों हिम सयंग बारेन पान कुसिनि पांग ए मासाहा जे चात सिगंग लथि हुम मासि लकला बांग मासि येक बबा बा केरा बा पान कुसिनि तते आरो खेन आरो यांग थिक लेंग कुंगा नेचि बोंग आरो आतिन पान ले संग नु बानु फेम बा बोंग खेन फेम बेल अमा मा मे नुरे नु बेल अमा मा बोंग नु बेल फेम बेन नंग नु बाय चोगु केरा बा पान कुसिनि मांग ए मासा ओके लकला बांग मासि येक पनि दे हेकेरके आरो अनि चाटले ए मासारे हिंगमनो आखेरिक नो बासुयेम तारुबे
1: पाप मामेलो अब चाटले छे अब चाट अतिन संग चातो पार्टिसिपेट चोक मगर जखेन म डेडिकेट पोम मांग मेलो चोकिया चोक मांग मेलो कुसंग लामा सुक्ते मेलो पाप मा अब चाटले छे निसाम लियांग लाम दे दिन हन्दु पाप मामेलो
0: चाटले निसाम लाम दे हन्दु
1: एक्टिव आजुगुन त खेन हेकेरिके करियर पाप मामेलो हेनां हेकेरिके लीडरशिप रेन मेलो हेकेदिके मेन्चु मसा छ पा मना कन्फिडेंट नु इन्डिपेन्डेन्ट मेबो चाले जोगुले मेलो चाले जोगुले
0: र आबांगे चोक मा सुक्तुङ केर बेन आखो देख पा
1: दला
0: थे सुयेम तारु अति चाले नि सम्भाकु नि सम्हन्दु तुम र चाले

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्र

0: क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थीं। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसक के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में यह 2 गुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरूआत केवल एक नए वाहन की शुरूआत नहीं है बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल 0 हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाई जिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 213.67 मीटर तथा 1404 किलोहर्जमा हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। साथै श्रोताले हाम्रो यस प्रसारणलाई एफएम कञ्चनजंघाको 103 मेगाहर्ज तथा न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, समय स्टुडियोको घड़ीमा 6:05 भइरहेको छ र अब प्रस्तुत छ दैनिक ग्रामीण कार्यक्रम।

केन्द्रीय गृहमंत्री तथा पूर्वोत्तर परिषद का अध्यक्ष अमित शाह ले केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को उपस्थिति में शिलांग मेघालय में पूर्वोत्तर परिषद को 73वां पूर्ण बैठक को अध्यक्षता गर्नुभयो। सिक्किम का मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामाङ पनि बैठक में उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। श्री तामाङले विकसित भारत 2047 को दृष्टिकोणसँग मिल्दोजुल्दो सिक्किमका प्रमुख विकास प्राथमिकताहरूलाई प्रकाश पार्नुभयो, जसमा जैविक कृषि, पर्यटन, शिक्षा, सीप विकास, एमएसएमई सम्बन्धी प्रगति, नवप्रवर्तन र पूर्वाधार विकास शामिल थिए। वहाँले पूर्वोत्तर क्षेत्रमा कृषि मूल्य श्रृंखला र बजार सम्बन्धलाई सुदृढ़ पार्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड़ दिनुभयो।

0: Angkor Shom Depcha Un Nyot Yuk Puntar Plong Dun Hung Tomo Un Atho Rotha Yuk Aklet Sere Tsugyam Tsukla Liangkor Nyot Yuk Plong La Ari Tuzumga Dun Hung Tomo Tungvo Long Bongchi Kurtak Aji Tamta Renjong Sa Tunka Suknim Sam Gulon Ka Akur Matsid Boni Sere Surong Lam Tsu Torok Tuntok Necha Netip Torok Ted Ari Akur Ka Renan Minolot Highway Pedik Sere NH10 NH17 and NH15 angak matsid boni. Ulomdo renun jungtuk tope pid diklon and tarhut pidik plongla tuzum matung tomo. Renza renjung akor machong jukapre munhambu highway tarhut yuk and sulomat tuntimbu yuk rem lungmat wambu plong angak machong gotomo. Ulomdo renjung sa akor tujutka Kurta gazing langde akur matung tomo. Ulomdo rene keviki jiva un ayus mungkong anguk matung to. Ori tugum renun jilla conference hall ka panchat ongdu songdeb zumnun bigbu jungtuk pidik plong tamdun matung tomo. Renjung jungtuk li un lidong un liangkung bongchi sa kurta bimhang limbu nun 12 nambung simdapung GPU sa al zukambu li akur matung tomo. Ari akur ka renun arium zuk jenglut un bamtin mu morosong nun panto liugat bu dunung tomo. Kurtak nun pidik tarhut plong semket matung liang uri ka bambu morosong rem zuk tubu bi tubu pidik rem arium mat liugat bula dunung tomo. Cukir banggal zungtuk nun nongko liuka siwok rompo railway pidik rem Jalpaiguri apu Machong tunga 20 acre jungtuk nyot rem bihung tomo. Sereka renjong un tuker bangal bek rail atut arium zukshong gotomo. Tosong untubu liangjung kurtak kurmom tuzumka are atun munhung tomo. Nagrakata ka chotubu nyot rem railway tukpe rem bishong nahan punzok bongchi rem biset buni. Liangkur tahut kurtak dilip gos nun kurtak kurmom un are nun. Liangkor rem atut tarhut machong jukap dunhung tomo. Siwok Rampur Railway nun tungvo lom liang notkur peyuk un lu liang sa kom yuzer tarhut rem lung machong dunhung tomo. Ulomdo renjung rem minorlot rail lom kyoshong dunhung tomo. Surong Rampur ka ngun tubu Siwok Rampur Railway line tukpe ka tarhut rem ngokshong tun ka Irkon International Limited sa lentop ka railway sa Sizum akur matung tomo. Siwok Rampur Railway Line pidik tarhut rem Tsugyam Tsutlat Liangkor Railway Infrastructure pidik rem akur matung tomo. Tuzumka Sizum sa ongdu songnun aduk rem seser la un pidik re arium mat matgat bu taksik matung tomo. New Delhi ka nguntubu minolut panchat chila tuntok necha nethe funga rathosa gezing liangde sa omchu gram panchat nun zenkyo bithardit un aryum zukten lom panchat nonglut sam rathaka kyotop matung tomo. Are chila re brongchi panchati rajkirtak Rajit Ranjan Singh rem aryumbu panchat Katlut yuk un liangkur bamtong tarhut plong yuk matubu nun matba puung tomo. Ulomdo gyakar lom gun ka fli tip nyet panchat lip ka kakat sa nyet tu yumu panchat song rem la chi bihung tomo. Surong sa tun ka lun sa tabito song mo lun sa tari rem arata ring ka senong o.
1: Di lungte ka gantuin. Tane che karmaring jing hole sembona teng dinchu tensum ki chokdi changsar council silong na thembobe chokdi dina union nangsi lempu amit sa ki ukhi na bobe dina union lempu jyoti Aditya Sindhya Chota Denjong ki chachi lempu Prem Singh Tamang khoya nyamju lembobe chokdi dikap lo chachi lempu Prem Singh Tamang gi Denjong yage nyamchi biksit Bharat nito jipchu sedin ki hona kheche sumbobe khongi mikul dichune kiden singpo yukor labjang lakchal kongpel chungchung chong lekcho infrastructure kongpel dichundi tenglo khongi mikul sebobe Denjong ki chachi lempu ki high level task force yang na taring ki chokdi kap changsar yu na sonam ta dumra di chui teng lo khongi dupche ki tendem na gobe. Union Ministry of State for Road Transport and Highway ki limbu ajai tamta khon denjong na nin sum ki jiko lo chembobe khong ki jiko na kusap tamta ki NH10, NH710 ta NH510 charji jikor na sein yunen limpu ajai tamta gejing jongkha na ya chembobe jikor kaplo gejing ki KBK geba ta ayush menkha na jisip na bobe denjong jung ki building and house and labor department lekhung ki limpu bimhang limbu chogi chuni nambus sindrabung jipyo ki sapu jawe khimna jisip na bobe jisip ki tikap lo kusap limbu ki jawe khim ki kheche ta ona kyongsep ki micho lo gocha thope yarge ten lo khongi jipobe nuk bangal jung ki khelen ki thole kheche sibok railway project charji di lo shuknen jawe ten lo jalpeguri jongkha na nishu ekar jung ki saji na bobe dina nuk बंगाल ता देंजों की फाना मेखोर की थिनलम दिलो तोप छें थेंसेबे दो थेंबे नादे ये कालेन लेंचो यांगने स्टेट कैबिनेट मीटिंग चोगदी दीना थाकचे लेंबोबे दिले क्योंसे फेलगे लिंपु दिलीप कोष की सुंबोबे नंग नंगलेन खां की नेलेन मिक्यूल दी एक्सिलरेट डिपजी यारगे ता साखों थिनलम लेम जबे तेनलो इन लाप्ती खोंगी सुंबोबे कारिंग रोम्पू ना थेम्बे सिबोक रोम्पू रेलवे मेकोर लाम की चार्जी डुबचे जम्पू जावे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की रोराम नंगशा रेलवे स्टैंडिंग थिंसोई सिबजू ना लेपे पोगे सापू दिल्ली ना सेंसोल ठीकाप ना गेलियोंग पंचायत सेरा न्यूटो निशुचांगा टेंडल दी ना गेजिंग जोंखा की ओमचुंग ग्राम पंचायत की पॉवर्टी फ्री एंड इनहेंस लाइवलीवुड्स पंचायत नंगदार गेलियोंग की थेंग सुम्पो कोने की रिम्पा डुबोबे चीथिन छोपे लिंपु राजीव राजन सिंह थोले छेंसोल फुलबे सेरा की थिमोंग न्यामजु चेंता ई ने थोपे क्योंसेप धारफेल की सेंगते भिंसेबे ग्यागान नांगले योंगदम जिप्चु सेनी पंचायत चुलो सेंगते फिबो ये ने दीना निशु चानी पंचायत पुमचुया ये पोबे बाईस पंचायत सीजिन की किरण या खाता जेन सुनम ओना ले दुमराई लेचे पाचु की उखीना नामची जोंखा की स्कीप ब्लॉक चुमलुंग सोनम लुंग लेखुंग दिना खेत बचाओ अभियान गोचुकोबे खेत बचाओ अभियान दिलोय गेलियोंग की दौ चिक धारे तीरिंग कुले तोना अभियान नंग ये ने दौ ठुकोई छे चीले छे सुमचु नीतो निशु चाटु साते दिना न्याम न्यामडेल सिंह ले था सिंपो फेंदे ही लिंपो की उखी नाबोबे यंगना अंडर द लीडरशिप ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गैलियों की खेत बचाओ अभियान नंगतर तारिंग पाक्यों याक्टेन ग्राम पंचायत केंद्र अनाया सिंग्योपोई तोना लेरिम जाकोबे लुंगते का गातोरे तारिंग की लपे नेचुल नारा शुजोपोई तुझी छे
2: हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं र श्रोता अब सुन्नुहुनेछ हिन्दीमा एक वार्ता।
3: आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो ये हमें याद दिलाता है कि यह धरती, यह नीला आसमान, यह बहती नदियां और यह शुद्ध हवा किसी एक की जागीर नहीं बल्कि हम सबकी साझी विरासत है। लेकिन आज इस विरासत पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और मौसम का बदलता मिजाज हमें कुछ कह रहा है। दोस्तों, जब हम सुबह सोकर उठते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं तो हरी भरी पत्तियां, चहचहाते पक्षी और आसमान में चमकता सूरज हमें एक नई ऊर्जा एवं ताजगी से भर देता है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जिस प्रकृति ने हमें जीवन की यह खूबसूरत सौगात दी आज वह खुद कितनी तकलीफ में है। हमारी धरती जो सदियों से हमारा पालन पोषण कर रही है, आज बढ़ती गर्मी, प्रदूषण और मौसम के बदलते मिजाज से कहरा रही है। आज समय आ गया है कि हम सिर्फ चिंता न करें, बल्कि समाधान की बात करें, और वह सबसे बड़ी समाधान छिपा है नवीकरणीय ऊर्जा में, यानी रिन्यूएबल एनर्जी में। श्रोताओं, आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान। और इन सब के साथ एक और चीज जुड़ गई है, वह है ऊर्जा। सुबह के अलार्म से लेकर रात के पंखे या एसी तक हमारा पूरा जीवन ऊर्जा पर निर्भर है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि कोयला निकाल रहे हैं और उसे अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं? नतीजा, हमारी फैक्ट्रियों और पावर पॉइंट की चिमनियों से निकलता हुआ वह काला जहरीला धुआं जो सीधे हमारी हवा से घुल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और न जाने कितने जहरीले गैस हमारे इस खूबसूरत पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा घेरा बना लिया है जो सूरज की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। इस ग्लोबल वार्मिंग का असर आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं। आपने गौर किया होगा, जब गर्मियां झुलसने लगती है, नदियां सूख रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, बेमौसम बरसात से हमारे किसान भाइयों की फसल तबाह हो रही है, यह प्रकृति का गुस्सा नहीं, यह प्रकृति की चेतावनी है। यह इस बात का सबूत है कि हम जिस डाल पर बैठे हैं, उसी को कुल्हाड़ी से काट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कोयला और पेट्रोलियम का यह खजाना सीमित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले कुछ देशों में यह पूरी तरह खत्म हो जाए, तब हम क्या करेंगे, हमारा भविष्य क्या होगा? अब सवाल उठता है कि यह नवीकरणीय ऊर्जा आखिर है क्या? बहुत ही सरल शब्दों में कहे तो यह वह ऊर्जा है जो हमें प्रकृति के इन सूत्रों से मिलती है, जो असीमित है, जो कभी खत्म नहीं हो सकते और जो पूरी तरह साफ सुथरे है। जरा सोचिए, हमारे पास सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी का कितना बड़ा भंडार है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां साल के अधिकांश दिन भरपूर धूप खिलती है, सूरज लगातार अपनी रोशनी बिखेरता है। इस रोशनी को जब हम सोलर पैनलों के जरिए बिजली में बदलते हैं, तो ना कोई धुआं निकलता है, न प्रदूषण होता है और न ही प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचता है। यह पूरी तरह ग्रीन एनर्जी है। ठीक इसी तरह हमारे पास पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी है। समुद्र के किनारे पर और पहाड़ी इलाकों में चलने वाली तेज हवाएं जब विशालकाय पवन चक्कियों के ब्लेड को घुमाती है, तो बिना किसी ईंधन के बिजली पैदा होती है। हमारे पास नदियों के बहते पानी की जल विद्युत ऊर्जा है। हमारे गांवों में गोबर से बनाने वाली बायोमास और बायोगैस ऊर्जा है। यह हमारे देश की मिट्टी, हमारे देश की हवा और हमारे देश के आसमान से बसती है। गंभीर चेतावनियां हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की हालिया रिपोर्ट हमें चौंकाती है, क्योंकि रिकॉर्ड बताते हैं कि साल 2024 इतिहास का अब तक का सबसे गर्म साल दर्ज किया जा चुका है और हम खतरे से उस निशान के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि यदि पृथ्वी की गर्मी 1.5 डिग्री सेल्सियस की इस लक्ष्मण रेखा को पार कर गई, तो दुनिया का मौसम चक्र पूरी तरह तबाह हो जाएगा। और जानते हैं इस तबाही का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? दुनिया भर में होने वाले कुल प्रदूषण का लगभग 25% से 30% हिस्सा सिर्फ हमारी पारंपरिक बिजली यानि कोयला और गैस जलाने वाले थर्मल पावर प्वाइंट से आता है। इसी धुएं के कारण आज स्वास्थ्य संगठन WHO कहता है दुनिया की 99

0: प्रतिशत आबादी ऐसी हवा से सांस लेने को मजबूर है जो सुरक्षित नहीं। दुनिया भर में लगभग 70 लाख लोगों की असमय मौत हो जाती है, बल्कि यह समझाने के लिए है कि अब हमें रुकना होगा और अपनी आदतों को बदलना होगा। लेकिन इस अंधेरे के बीच एक बहुत ही खूबसूरत और उम्मीद जगाने वाली रोशनी भी है, और वह रोशनी हमारे अपने देश भारत से आ रही है। आपको जानकर गर्व होगा कि आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल होते हुए सीधे तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। हमारे देश के राजस्थान में स्थित भड़ला सोलर पावर आज भी दुनिया के सबसे बड़े और सोलर केंद्रों में एक है, और गुजरात के खाबरा में दुनिया का सबसे विशाल हरित ऊर्जा अब तेजी से आकार ले रहा है। भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक संकल्प लिया है कि साल 2030 तक देश की कुल बिजली क्षमता का 500 गीगाबाइट हिस्सा पूरी तरह से स्वच्छता से आएगा। और श्रोताओं, सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? हमें लग रहा है कि हम इस रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत ने अपने तय समय से 5 साल पहले ही एक बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है। आज हमारी कुल स्थापित बिजली क्षमता का यह शानदार आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि भारत सिर्फ बातें नहीं कर रहा, बल्कि अपनी कंपनियों और हौसले से पूरी दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का एक नया रास्ता दिखा रहा है। तो आइए जमीनी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत सरकार की पीएम कुसुम योजना के तहत देश में 35 लाख से अधिक किसानों को डीजल की जगह सोलर पंप देने का महालक्ष्य रखा गया है। इससे खेतों में करोड़ों लीटर डीजल का जलना बंद हो रहा है। वही शहरों की बात करें तो अगर एक सामान्य परिवार अपने घर की छत पर मात्र 3 किलोवाट का एक छोटा सा सोलर पैनल लगवाता है, तो वह हर साल लगभग 3600 से 4000 यूनिट बिजली खुद सूरज रोशनी से बना लेता है। इसका मतलब है कि बिजली का बिल तो शून्य होता ही है, साथ ही वह परिवार हर साल लगभग 3 टन कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण से घुलने से रोक लेता है, जो कि अकेले 100 से अधिक पेड़ लगाने के बराबर है। इसके साथ ही हमारे सड़कों पर दौड़ने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पारंपरिक पेट्रोल डीजल कारों की तुलना में अपने पूरे जीवन काल में 50% से 60% कम कार्बन उत्सर्जन करती है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि जब एक आम इंसान बदलता है तो पूरी पृथ्वी बदलने लगती है। अगर आपके पास मकान है या आपकी सोसाइटी में जगह है, तो रूफटॉप सोलर सिस्टम यानी छत पर सोलर पैनल लगाने के बारे में सोचिए। इस पर शुरुआत में थोड़ा खर्च जरूर होता है, लेकिन 4-5 सालों में यह पैसा वसूल हो जाता है, और अगले 20 सालों तक आपको मुफ्त और प्रदूषण मुक्त बिजली मिलती है। अगर हम सोलर पैनल नहीं भी लगा सकते, तो कम से कम बिजली की बचत तो कर सकते हैं। याद रखिए, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। जब इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीएस को प्राथमिकता दे या सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो और बसों का इस्तेमाल करें, तो हम अपने शहरों की हवा को सांस लेने लायक बना सकते हैं। प्रकृति ने हमें धूप, हवा और पानी के रूप में असीमित ऊर्जा का खजाना बिल्कुल मुफ्त में दिया है। अपने घरों में ऊर्जा की बर्बादी को हर हाल में रोके, बिजली बचाए, प्रकृति के करीब रहिए और मुस्कुराते रहिए।
1: श्रोताले अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो हिन्दीमा एक वार्ता। हामी आकाशवाणी गान्तोकको बेलुकी प्रसारण सेवाबाट बोलिरहेका छौं। यसका साथै श्रोताहरूले हाम्रो यस प्रसारणलाई 103 मेगाहर्ज एफएम कञ्चनजंघाका साथै न्यूज अन एआईआर मोबाइल एप मार्फत पनि सुनिरहनु भएको छ। श्रोता स्टुडियोको घड़ी अनुसार अहिलेको समय हो यहाँहरूकै पत्रमा आधारित रमाइलो संगीत कार्यक्रम नेपाली अनुरोध संगीतको भने यस घड़ी नेपाली अनुरोध संगीत सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण प्रिय श्रोताहरूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। त आउनुहोस् श्रोता, अब सुनौ यहाँहरूकै रोजाएका मिठा मिठा गीतहरू। कार्यक्रमलाई अघि बढ़ाउँदै आजको पहिलो कोशीले लिएका छौं कलाकार दीपक खरेलको स्वरमा सजिएको यस गीतका निम्ति अनुरोध गर्नुहुने श्रोता हुनुहुन्छ डेभलपमेन्ट एरिया गान्तोकबाट राजु खरेल, इन्दिरा खरेल, दीपा खरेल र दिव्या खरेल। त आउनुहोस् सुनौ यो कार्यक्रमको पहिलो प्रस्तुति।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला। इसके अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार के 12 साल, नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: दिस इज आकाशवाणी। In the special series, now we bring you a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants are Dr. V.K. Paul, former member, Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, President, AIIMS Bilaspur. Moderator is Priyanka Arora.
2: स्वास्थ्य नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का

0: बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा, आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत-बहुत नमस्कार।
2: तो धन्यवाद
0: जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूं कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
1: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारी डायमेंशंस हैं, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशंस को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
0: जी,
1: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता था नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नजर से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जब हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
0: जी,
1: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूं कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूं।
0: जी हाँ, यह अभूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
2: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रूपये डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रूपये उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रूपये के बीच में आ गया। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती, यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
0: जी।
2: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं
0: जी।
2: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
1: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
0: जी,
1: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है हॉस्पिटल

0: अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
1: जी।
0: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दी जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं बच्चे हैं उनको टर्शियरी केयर में हार्ट की सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए, तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए। ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत पीएमजे के अंतर्गत हर रोज 85,000 से 90,000 व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80,000 से 90,000। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है। अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहां तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है लाभार्थी हैं उनमें लगभग एक 0.7% less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ आपको जान के खुशी होगी कि अब 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस अब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को जोड़ दिया गया है। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सबके लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको कि एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की उसके साथ जोड़ के वयोवंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं, मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का
1: जी,
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने पर से नहीं है, इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया

0: और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है। और अब इसको आगे ले जाकर के यूएन आईटी प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है, इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे दो बड़ी बीमारियां हैं,
1: जी
0: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है, वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का उपयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में, उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है, लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है, वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो जो भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है।
1: जी
0: तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके, तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
2: आपके सवाल में दो हिस्से हैं। पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा।
1: जी,
2: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों की, इन्फेक्शियस बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य में निहित हो गई कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर 3 साल में 5 साल जैसा प्रोटोकॉल है, इसपे 3 कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई आंख का इलाज, ईएनटी कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस 4 पैकेजेस की बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1,70,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है एक पीएससी वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 1,20,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया गया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास एएनएम थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 1,20,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में

0: एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया है। और ये टिपिकली बीएससी पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ
1: जी।
0: सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयां, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री और पीएचसी वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा। और जो बाकी सेवाएं शुरू से इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, टीबी कंट्रोल, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रही है, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है और ये बहुत दूर तक हमें लेकर जाएगा। क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें। और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो और जरूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर पीएम से जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो ये बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पपन पे हुए सिस्टम है, ये इन सब के जो योग है वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको ये बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है ये भी अनप्रेसिडेंटेड है।
1: बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जैसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: जो एचपीवी वाला टीकाकरण है और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने तीन कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है उसी के लिए वैक्सीन है
1: जी,
2: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर, और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और हुई है हमारे देश में इस पिछले 12-13 साल में, एम्स का संख्या एक से बढ़कर के इस समय 23 एम्स हो गए, जो अपने आप में एक गजब की चीज है। कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए, फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से जेएनके में दो हैं और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को एस्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शियरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं, इन सारे में ये सब नए इंस्टीट्यूशन

0: उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है। तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पर ध्यान देकर के उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है, जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य ID जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
2: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप है उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी, 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है, 87 करोड़, 145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशंस भी हैं कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
0: वी हैव जस्ट सीन लास्ट 2 डेज सम ऑफ द रीसेंट डेटा। One of the key issues which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now this is remarkable because this is, jisko kehte hain, bilkul phasi hui cheez thi, jisko ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग

0: हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग। लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है। अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है। इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, आज वो पढ़ करके लगभग 95% हो गया है। ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टैलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो। और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हमारी तरफ।
1: बिल्कुल, अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
2: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया, एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया। उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है या बर्ड से आता है, चिकन से आता है। अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरनमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए। तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है। तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है। हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है, हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमिया का सिस्टम है उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें। इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो एक IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है। सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया, वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे हैं। काफी बड़े तौर पे इन सारे को, पिछले लेसन्स को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए ये स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए, तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
2: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है।

0: देश में 19,000 से ज्यादा जनऔषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
1: जी।
0: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है। बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जनऔषधि केंद्र हैं, ये सब जगह सब प्रदेशों में सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है, और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you are listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, president, AIIMS Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रे

0: इंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च

0: तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
1: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
0: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे, सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
6: अहमदाबाद का एक्का एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ अलका गुर्जर और डॉ सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Keralam. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Keralam, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter into top 3. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today held talks with Acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrendra Tandon said, Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation.
8: The discussions also went into broadening

0: countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 आदिवासी सशक्तिकरण और समावेश का एक दशक, और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अनंत प्रकाश पांडे जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार में। पांडे जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: जैसा कि पांडे जी, अभी भारत सरकार की तरफ से जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 मनाया जा रहा है। ये एक महीने तक चलने वाला उत्सव है और जिसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय कर रहा है। ये कार्यक्रम 10 मई से शुरू हुआ और 9 जून तक चलेगा, तो 12 सालों में जनजातीय विकास के क्षेत्र में जितनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां देश ने हासिल की हैं, जो आदिवासी और जनजातीय हैं उनको गरिमा प्रदान करने के लिए, उनको सशक्तिकरण करने के लिए, और जो भी समाज में उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस समारोह के माध्यम से जो भी काम किए गए हैं, इसकी जानकारी देने की कृपा करें।
2: जनजातीय गरिमा उत्सव 2026, जैसा कि बताया हमारे वक्ता ने कि 10 मई से 9 जून तक ये लगभग एक महीने का कार्यक्रम रहा है, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग एक एक हर हफ्ते के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया था, जो जनजातीय समाज के लिए पिछले 12 वर्षों से सरकार ने कई सारे कदम उठाए हैं, तो उनके समग्र विकास की एक नई गाथा लिखी है पिछले 12 वर्ष में। उन्हें न केवल रोजगार का अवसर, से जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे स्वास्थ्य है, एक्सेस एजुकेशन के लिए है और हेल्थ एक्सेस है, इस तरह की तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे पीने के पानी की सुविधा हो, तो तमाम सुविधाओं को सरकार ने अपने पूरे जोर से पिछले 12 सालों में लगे रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अगर हम लोग केवल बजट का तुलना करें कि बजट पिछले 12 सालों में कितना बढ़ गया है, तो अगर ट्राइबल जनजातीय विकास के लिए अगर ट्राइबल पे बजट जो पहले लगभग 2012-13 में 4000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज वो 15000 करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है, एक बहुत बड़ी वृद्धि है बजट में। और इसी प्रकार से अगर देखेंगे आप कि जैसा मैंने बताया कि अलग अलग जो बुनियादी सुविधाएं, जिसमें सबसे बड़ी शिक्षा के ऊपर जो सरकार की पूरी जोर रही है कि ट्राइबल बच्चों को कैसे अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिल पाए, उसके तहत एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं। लगभग 500 स्कूल आज की डेट में नए बने हैं और जिनसे लगभग 1,40,000 स्टूडेंट्स हमारे जो शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पढ़ाई कर रहे हैं। पूरी तरह आवासीय सुविधा है और मुझे बताते हुए बहुत गर्व और खुशी हो रही है कि इसमें काफी सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जैसे नीट है, जैसे हमारा IIT है एम्स में जाने के लिए, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, इस तरह के कई सारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं को भी उत्तीर्ण कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि कितनी हाई क्वालिटी की एजुकेशन इस पूरे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के माध्यम से सरकार जो है प्रतिबद्ध है अच्छी एजुकेशन पहुंचाने के लिए। इसी तरह अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया में इरेडिकेशन मिशन का भी 2023 में उसकी शुरुआत की है, और जिससे लगभग 60 करोड़ जो है जनजाति उनका अच्छी तरह से स्क्रीनिंग हो सका है। और अगर हम सड़क, बिजली, पानी, इस तरह की जो अलग बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसमें भी इस सरकार के तहत पीएम जनमन योजना हो, चाहे धरती आबा उत्कर्ष उत्थान योजना है, इस तरह की तमाम जो योजनाएं हैं उनके थ्रू भी बहुत सारे कन्वर्जेंस के थ्रू अलग अलग जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं बुनियादी सुविधाओं पे बहुत जोर दिया गया है। और धरती आबा में आपके 17 मंत्रालय हैं और 25 इंटरवेंशन के तहत अलग अलग इंटरवेंशन किए जा रहे हैं ताकि जनजाति समुदाय का विकास हो सके और उन्हें जो सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं मिल सकती हैं वो सुविधाएं मिले। और पूरे 12 साल के जो तमाम समग्र विकास के लिए कार्य किए गए हैं उन सबको सेलिब्रेट करने के लिए और उसको कैसे हम लोग एक उत्सव के रूप में मना सकें कि जो सरकार ने और सरकार के ऐतिहासिक कदमों ने इस पूरे जनजातीय विकास की नई जो गाथा लिखी है उसको कैसे एक उत्सव को मनाया जा सके, उसके लिए मंत्रालय ने जनजातीय गौरव गरिमा उत्सव 2026 एक मंथ का हम लोग चला रहे हैं, जिसमें पहले हफ्ते में हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आज की डेट में तकनीकी जो जितना एडवांसमेंट हो रहा है वो बहुत बड़ा योगदान आजकल कर रहा है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और जो सुविधाएं देना चाहते हैं ट्राइबल जनजातीय भाई बहनों को उसको किस तरह से टेक्नोलॉजी के थ्रू आसानी से पहुंचाया जा सके, और उसके तहत हमारा 10th मई से 17th मई तक ये टेक्नोलॉजी एज अ डेवलपमेंट ड्राइवर मतलब विकास में कैसे ड्राइव कर सकता है टेक्नोलॉजी, इस पे एक पूरा वीक हम लोगों ने आयोजन किए तमाम प्रोग्राम।
1: पांडे जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, तो जितनी आपने योजनाएं बताई और निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, लेकिन एक मोटे तौर पे हम देखते हैं कि ज्यादातर जो जनजातीय इलाके हैं वहां पर सुविधाओं को पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, उस तरह का ढांचा होता नहीं, तो ऐसे में प्रशासन क्या ऐसे अतिरिक्त कदम उठाता है जो सुविधाएं हैं उनको जनजातीय लोगों तक जहां वो है वहीं तक पहुंचाए जा सके।
2: पहला जो हम लोगों ने वीक मनाया वो तो टेक्नोलॉजी कैसे ड्राइव कर रहा है, और टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा इनेबलर होता है अगर आप अपनी बात कहीं गांव तक पहुंचाना चाहते हैं लास्ट माइल तक। आजकल बहुत जगह बहुत ट्राइबल क्षेत्रों में भी इंटरनेट का भी पहुंच हो गई है, और इसलिए तमाम ऐप के माध्यम से और इस तरह की जो वेबसाइट पोर्टल के माध्यम से भी बहुत सारी हम लोग योजनाएं अवेयरनेस के तौर पे पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल योजना, जिसे आपने कहा बहुत सही बात आपने बताई कि ट्राइबल हमारे जो भाई बहन साथी हैं वो बहुत सुदूर और डिफिकल्ट एरियाज में रहते हैं और उन तक पहुंचना एक अपने आप में चुनौती रहती है, और इस चुनौती को ओवरकम करने के लिए सरकार ने आप देखिए तो पिछले ऑलमोस्ट 10 सालों में लगातार जन भागीदारी अभियान चलाते रहे हैं, और इसी तहत एक बहुत बड़ा जन भागीदारी अभियान जो हमारा इस पूरे जनजाति गरिमा उत्सव का जो दूसरा हफ्ता था जिसमें 18 से 25 मई इस दौरान हमने सबसे दूर सबसे पहले नाम की एक पहल शुरू की, जिसमें जन भागीदारी के थ्रू जितने सर्विसेज थी वो उनके डोर स्टेप जिनके पास तक कैसे सारी पहुंच सके, इसके लिए लगभग 76,000 जो हमारे गांव थे 600 डिस्ट्रिक्ट में वहां पे 57,000 कैंप्स किए गए और लगभग 90 लाख ट्राइबल जो हमारे भाई बहन शामिल उसमें हुए, और कुछ आंकड़े आप सभी श्रोताओं के लिए बताना चाहूंगा कि उसमें लगभग 13,000 लोगों की जन सुनवाई हुई जिसमें उन्होंने अपनी समस्याएं अपनी मांग ट्राइबल समुदाय के लोगों ने रखी, और 19,000 आदि सेवा केंद्र जो कि एक तरह से एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पर हम लोग मंत्रालय उसको प्रस्तुत कर रहा है कि एक ऐसी संस्थागत व्यवस्था गांव के लेवल पे रहे जहां पे कुछ बिल्डिंग को चिन्हित करके उसे आदि सेवा केंद्र के तौर पे चिन्हित किया गया, और वहां पे जो ट्राइबल से रिलेटेड और जो ग्राम विकास से रिलेटेड मंत्रालय हैं अलग अलग सोशल डेवलपमेंट के मंत्रालय हैं उनके डिपार्टमेंट्स के लोग वहां जाएंगे और लोगों के बीच में उनकी समस्याएं सुनेंगे स्पेशली ट्राइबल लोगों की। तो ये आदि सेवा के माध्यम से इसी तरह अगर आप देखोगे इन सारे कैंप्स में बहुत सारे जो स्कीम्स का सैचुरेशन का भी माध्यम किया गया, तो अगर आप आधार कार्ड एनरोलमेंट की बात करेंगे तो लगभग 2.5-3 लाख लोगों को आधार कार्ड में एनरोल किया गया केवल इस एक हफ्ते के दौरान की मैं प्रगति बता रहा हूँ। आयुष्मान भारत कार्ड लगभग 2.25 लाख लोगों को दिया गया, और इसी तरह हेल्थ स्क्रीनिंग जो है टीबी और सिकल सेल के हेल्थ स्क्रीनिंग लगभग 1.35 लाख लोगों की गई। तो इस तरह के अभियान जो आपका प्रश्न था डिफिकल्ट एरिया में कैसे मंत्रालय एक्सेस कर पाता है, तो मंत्रालय स्टेट गवर्नमेंट्स के जो राज्य सरकारों के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बीडीओ लेवल पे जो गांव के लेवल के स्तर पे अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन सबके साथ कंधे से कंधा मिला के इस तरह के अभियान लगातार समय समय पे चला के वो हमारे पास ट्राइबल ना आए, ट्राइबल को ज्यादा दूर न जाना पड़े, सरकार उनके द्वारा एक तरह से जाती है और वहां पे जाके योजनाओं के बारे में बताती है और कुछ योजनाओं को जो लाभ मिल सकता है उसको कैंप के माध्यम से वहाँ भी लगातार देने का
1: जी। यहाँ पे एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी, सरकार की तरफ से जैसा आपने बताया बहुत प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता फैलाना सबसे एक महत्वपूर्ण काम है, इन प्रयासों की सफलता तभी है जब जिसके लिए काम किया जा रहा है उनकी भी भागीदारी हो, जिसको हम सामुदायिक भागीदारी की बात कहें, तो सामुदायिक भागीदारी को और बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया गया है?
2: सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट, जैसे हम लोगों ने पहले बताया कि अगर हम पिछले वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा अभियान आदि कर्मयोगी अभियान के रूप में उसको चलाया गया था और माननीय प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का सपना है उस संकल्प के लिए बिना समुदाय के शामिल हुए इस पूरे संकल्प को पूर्ण कर पाना आसान नहीं है। तो उसी के तहत आदि कर्मयोगी अभियान में हम लोगों ने लगभग 20 लाख ट्राइबल लोगों तक पहुंच बनाई, जिसमें अलग अलग विभाग अपने जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक ट्रेनिंग कम अवेयरनेस और सेंसिटिविटी की गई ताकि मास्टर ट्रेनर्स बने और मास्टर ट्रेनर्स के साथ फिर मिलके ग्राम स्तर पर जो विलेज डेवलपमेंट एक्शन प्लान बनाया गया, विलेज विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया, गांव वालों के साथ बैठ के ट्राइबल गांव के लोग हैं उनके साथ मिलके कैसे कोई प्लानिंग की जा सकती है, उनसे चर्चा करके कैसे प्लानिंग की जा सकती है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का, किसी भी समुदाय का भागीदारी सुनिश्चित करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका वो हो सकता है कि उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके विकास के जो उसमें वो कैसे प्लान हो उसके गांव का विकास, उसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित किया। तो इसके लिए लगभग 56,000 गांवों तक हम लोग पिछले 6 महीने में पहुंचे और उस 56,000 गांवों में गांव वालों के साथ मिलके जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, कुछ हम लोगों ने आदि सेवा केंद्र भी जो मैंने बताया था जैसे उसमें आइडेंटिफाई हुए थे, आदि सहयोगी और आदि साथी भी चिन्हित किए गए थे, कुछ वॉलंटियर्स और कुछ जो ग्राम स्तर पे राज्य सरकारों के अधीन जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके साथ मिलके और गांव वालों के साथ मिलके प्लानिंग भी की गई, कुछ बढ़िया डॉक्यूमेंट्स भी बने हैं उस पर भी काम हो रहा है। तो इस तरह से लगातार प्रयास ये रहता है कि जब तक गांव के जो असली जो वहां रहते हैं जब तक उनकी बात सुन के समुदाय क्या चाहता है वो चीज बिना जाने अगर हम प्लानिंग करते रहे यहाँ दिल्ली से या किसी स्टेट हेडक्वार्टर से तो वो कामयाब नहीं होता। लेकिन मंत्रालय ने पूरा इस बार सीरियसली इस मामले में प्रयास किया है कि हम ग्राम स्तर पर कैसे लोगों को जोड़।
1: जी, यहाँ पर मैं और एक बात आपसे पूछना चाहूंगा पांडे जी कि जब हम उद्यमशीलता की बात करते हैं, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक उद्यमशीलता को विकसित करना भी जरूरी है, तो इस क्षेत्र में खासतौर पे क्या विशेष प्रयास किए गए हैं?
2: जनजाति की अवस्था अगर देखी जाए तो सरकार का जो पहला फोकस रहा वो ये रहा कि कैसे इनको बेसिक सुविधाओं से अच्छी तरह से लैस किया जाए। अच्छी तरह से लैस करने का मतलब कि बेसिक सुविधाएं कैसे पहुंचाई जा सके, जैसे सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि इन सारे क्षेत्रों में धरती आबा अभियान हो, चाहे पीएम जनमन हो, चाहे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, स्कॉलरशिप है जो लगभग हम लोग 20 लाख पोस्ट मैट्रिक और 10 लाख प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देते हैं शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट को ताकि वो स्कूल ड्रॉप आउट ना हो सके उनको पूरी तरह से। तो इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हमने और सरकार ने अपनी तमाम योजनाओं तक पहुंचाई है, पहुंचा रही। अब जो बहुत महत्वपूर्ण चरण है वो ये है कि

0: इनको कैसे ग्रेजुएट, मतलब इनको कैसे दूसरे लेवल इनकम कैसे जनरेट की जा सके ताकि अपने पैरों पे खड़े हो सकें और पूरे देश के जो विकसित भारत 2047 में अपना योगदान दे सकें। तो उसके लिए जो दो बहुत महत्वपूर्ण मतलब एजेंडा है सरकार के, उस पर एक तो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स कैसे डेवलप की जाए, तो उसके लिए हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ स्किल के साथ ज्वाइंटली अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग कई जगह जितने हमारे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है वहां पे कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने सीएसआर के माध्यम से, क्योंकि सरकार की भी ये सोच रहती है कि प्राइवेट पार्टनरशिप भी की जाए, पब्लिक सेक्टर को भी लाया जाए ताकि समाज के हर वर्ग को जोड़ा जा सके, तो सीएसआर के माध्यम से भी हम लोग बूट कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा
1: सके। पंडित जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जनजातीय गरिमा उत्सव के बारे में और आदिवासियों के सशक्तिकरण और समावेशन के लिए सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है और एक पूरे महीने तक जिस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 सशक्तिकरण और प्रगति के दशक पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनंत प्रकाश पांडे और अमरीश सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Countrywide.